मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जुलाई सन 2026, सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथे से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता

0: आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें मूंग की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मूंग की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खेत में अतिरिक्त पानी नहीं लगना चाहिए और यदि लग जाए तो उसे तुरंत निकालना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 जुताई देसी हल से कर लेते हैं। अब जहाँ तक बात है बीज एवं बुआई की, तो मूंग की अच्छी उपज लेने के लिए इसकी उन्नतशील प्रजातियों को बोना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं पंत मूंग 2, नरेंद्र मूंग 1, PDM 11, PDM 54, मालवी जनप्रिया और मालवी जागृति। पंत मूंग 2 की पैदावार 6 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नरेंद्र मूंग 1 की जो पैदावार है वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और मालवी जनप्रिया एवं मालवी जागृति की पैदावार 12 से 15 क्विंटल है। तो इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाए लेकर के बुआई करें। इन प्रजातियों की बुआई तैयार खेत में ही करनी चाहिए और खेत को तैयार करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। मूंग की खेती के लिए 1 हेक्टेयर

0: 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय कुंडों में दे देना चाहिए, छींट कर नहीं। अगर उर्वरकों को छिटक देते हैं तो इन उर्वरकों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। बुआई के दो तरीके हैं, एक तो छिटकवा और दूसरा हल के पीछे कुंडों में। छिटकवा तरीका सही नहीं होता है, बुआई कुंडों में ही करनी चाहिए। एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखते हैं। कुंड में बुआई करने से एक साथ दो काम हो जाते हैं, एक तो उर्वरकों का सही ढंग से प्रयोग होता है तथा दूसरे बीज की सही ढंग से बुआई हो जाती है। एक हेक्टेयर मूंग की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को शोधित अवश्य करना चाहिए। बीज को दो बार शोधित किया जाता है, एक बार थीरम दवा से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम एक कवकनाशी रसायन है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। बीज का जमाव अच्छी तरह हो इसके लिए आवश्यक है कि राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित किया जाए। यदि 10 किलोग्राम बीज है तो एक पैकेट जो कि 250 ग्राम का होता है इसकी आवश्यकता होती है। इससे उपचारित करने के लिए पहले 0.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसमें 50 ग्राम गुड़ को घोल लेते हैं, फिर राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट इसमें मिला देते हैं, फिर इसे 10 किलोग्राम बीज पर फैलाकर हल्के हाथों से मिलाते हैं, फिर 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। तेज धूप में बुआई करने पर कल्चर के जीवाणु मर सकते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अगर रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लूक्लोरालिन दवा प्रयोग करते हैं। फ्लूक्लोरालिन 45 cc की 2 लीटर मात्रा को आवश्यक पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले खेत में छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक निकाई गुड़ाई भी कर देना चाहिए, इससे खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूंग की खेती करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें मूंग की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

विघ्नहर्ता, लंबोदर, गजानन, प्रथम पूज्य गणपति की आराधना से हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए आराधना का आरंभ उनकी आराधना से करते हैं।

जीवन के हर क्षण बस राम नाम हमारे भीतर होना चाहिए। राम में विश्वास और अगाध श्रद्धा हमारे जीवन को सरल और सहज बनाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और सुधा मल्होत्रा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। विषय है ईश्वर प्रेम।
1: परमपिता परमात्मा के संकल्प मात्र से रचित ये संसार विविध विचित्रताओं का भंडार है। यहाँ पग पग पर सापेक्षता दिखाई देती है, जैसे कि यदि एक ओर पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तो दूसरी ओर पश्चिम दिशा में चंद्रमा अस्त हो रहा होता है। इस प्रकार एक साथ दो अलौकिक शक्तियों का उदय और अस्त समस्त जीवधारियों को जीवन की दो भिन्न स्थितियों की शिक्षा देता है, अथवा मानो संसारियों के भाग्य चक्र को नियंत्रित कर रहा है और सूचित कर रहा है कि जीवन अथवा प्रणय निरा आनंदमय ही नहीं और कुछ भी है। प्रायः देखा भी जाता है कि संसार में सुख ही नहीं दुख, हंसी ही नहीं रुदन, प्रकाश ही नहीं अंधकार, ज्ञान ही नहीं और अज्ञान भी है। मानव स्वभावतः सुखादि को पाकर प्रसन्न और दुखादि को पाकर दुखी होता है, किंतु यदि हृदय में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, प्रेम है, तो मानव अन्य साधारण मानवों की भांति दुखादि को पाकर भी दुखी नहीं होता, बल्कि पूर्व स्थिति में ही रहता है। ईश्वर के प्रति तन मन धन से समर्पित होने पर ही ईश्वर प्रेम प्राप्त होता है और तत्काल दुख का समूल नाश हो जाता है। त्याग या समर्पण के अभाव में प्रेम निर्जीव होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ईश्वर प्रेम तो मानव मात्र क्या प्राणी मात्र को सुलभ है ही, बस उसके प्रति समर्पण का भाव चाहिए। ऐसा होने पर कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता। ईश्वर प्रेम का प्रबलतम उदाहरण तो यही है कि हम मानवों को देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही सुंदर पर्यावरण, जीवन यापन के विविध साधनादि प्राप्त हुए। कृपालु ईश्वर तो बिना पक्षपात के सभी पर अपरिमित प्रेम की वर्षा निरंतर करते हैं। उनकी दृष्टि में अच्छा या बुरा, अयोग्य या योग्य, विद्वान या मूर्ख सब समान हैं। ईश्वर स्वयं सत चित्तानंद रूप है या सत्यम शिवम सुंदरम है, अतः वो सबको अपने समान ही देखता है और देखना भी चाहता है। इसके लिए मानव मात्र का कर्तव्य है कि वो लगातार ऐसा प्रयास करे कि जिससे उसे ईश्वर का प्रेम अबाध रूप से प्राप्त होता रहे और जीवन सुखमय बन सके, साथ ही सदा ईश्वर का ध्यान मनन

0: चिंतन करने से मानव के मन में ईश्वर प्रेम की दिव्य ज्योति जागृत हो जाए, जो निराश व्यक्तियों के लिए आशा, निरुत्साहियों के लिए उत्साह, अज्ञानियों के लिए ज्ञान, निर्बलों के लिए बल और निराश्रितों के लिए आश्रय सिद्ध होती है। सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यंत सरल हो जाती है और मानव को स्वयं सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर, प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लगता है। दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान भौतिक युग में मानव के मन में ईश्वर के प्रति आस्था या विश्वास का अभाव है। वो तो एन केन प्रकारेण अधिकतम धन अर्जित और एकत्रित करके भौतिक सुखों को वास्तविक सुख समझ रहा है, उसमें आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी अंश नहीं देता। इसी कारण सीमातीत धन, सुख, ऐश्वर्य के साधनों को पाकर भी वो अपने में असंतुष्ट है। कारण स्पष्ट है कि बिना आध्यात्मिकता या ईश्वर प्रेम के सांसारिक सुख नगण्य सिद्ध होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तीनों तत्वों प्रीति, विवेक और शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना संयमित जीवन बिताना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, विषय था ईश्वर प्रेम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बच्चों की समसामयिक बीमारियां विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रीतम कुमार।
2: तीसरी बीमारी जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं, मौसमी सर्दी और खांसी। ज़्यादातर यह बदलते मौसम एवं वायरस के कारण होती है। इसके लक्षण बुखार, नाक से पानी आना, नाक का बंद होना, खांसी आना, इसके साथ पतली दस्त या उल्टी भी हो सकती है। आमतौर पर यह स्वयं 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए। अगर बुखार है तो बच्चे को पैरासीटामॉल दें, पौष्टिक आहार दें और अवॉइड करें कि हम बच्चे को एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि ये खुद ब खुद और एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो बच्चे को अननेसेसरी एंटीबायोटिक से बचाएं। अगर नाक बंद है तो बच्चे की नाक में आप नेजल सलाइन डाल सकते हैं या आप गर्म पानी की भाप दे सकते हैं। इससे हम बच्चे को सर्दी खांसी और मौसमी बीमारी से बचा सकते हैं। चौथी बीमारी जो आमतौर बच्चों में हमारे भारत देश में पाई जाती है वो होती है खून की कमी। खून की कमी कई कारणों से होती है और 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे एनेमिक होते हैं। उसमें से भी 50% जो बच्चे होते हैं उनका कारण होता है न्यूट्रिशनल यानी कि आहार की वजह से होने वाला एनीमिया, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया या आयरन डिफिशेंसी एनीमिया। इसमें लक्षण ये आते हैं कि आपका बच्चा हमेशा थका थका रहेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, चक्कर आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तथा आप अगर अच्छे से बच्चे को देखेंगे तो बच्चे की त्वचा हल्की पीली नजर आएगी, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। इसका उपचार जो हम अपने घर पे खुद से कर सकते हैं, बच्चे को देख के कर सकते हैं, बच्चे को हमें सबसे पहले आयरन युक्त पौष्टिक आहार देना होगा। इसके लिए हमें हरे फल, सब्जियाँ, दाल, सूखे मेवे, चुकंदर, गाजर आदि का अत्यधिक उपयोग करना होगा बच्चे के पौष्टिक के लिए, तथा दूध की मात्रा हमें कम करनी चाहिए, जिसके कारण अधिकतर माएँ क्या करती हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाती हैं, उसकी वजह से बच्चे का पेट हमेशा भरा हुआ महसूस होता है, इसलिए उसको भूख नहीं होती है और उसकी वजह से बच्चे में खून की कमी लगातार होती जाती है। तो इसलिए हमें खून की कमी को बचाने के लिए बच्चे को एक अच्छे आहार की ज़रूरत होती है, और वो अच्छा आहार तभी मिलता है जब हम उसे खिलाएंगे। तो इसलिए हमें ये सारे पौष्टिक आहार देने चाहिए और बच्चे को इस खून की कमी होने वाली बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर है भी तो उसे हम आयरन की ड्रॉप्स, सिरप वो आती हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं।

0: पांचवी बीमारी जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जो आमतौर बच्चों में मिलती है, वो है बच्चों में कब्जियत। आजकल के ज़माने में बच्चों में कब्जियत बहुत ही आम बात हो गई है। कब्जियत हम तब कहते हैं जब मल त्याग करने में बच्चे को परेशानी होती है, मल कम आता है, 3 दिन 4 दिन के बाद मल करता है बच्चा, कठोर बहुत ही सख्त मल निकालता है, तथा मल के साथ साथ उसमें रक्त भी लग के आता है। यह बच्चों में आमतौर ये ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम खुद बचाव कर सकते हैं और बच्चे को अपने बचा सकते हैं। ज़्यादातर मामले जो बच्चों में कब्जियत के होते हैं वो उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसका कारण यही होता है आहार में परिवर्तन। जब बच्चा 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, उसके बाद हम माँ के दूध से उसको सॉलिड पे या दूध में से ले के उसको खाने पे अनाज पे ले जाते हैं, उस टाइम पे ज़्यादातर मिलने होने के कारण होते हैं। पानी की कमी, बच्चे को ज़्यादा दूध देना, अनाज कम देना, इन ये सब कारण की वजह से बच्चों में अधिकतर कब्जियत होती है। तो इसको भी हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं कब्जियत से, उस परेशानी से जो बच्चा उस समय से गुजर रहा है। इसको बचाव का तरीका होता है कि दूध की मात्रा कम करें, भरपूर मात्रा में बच्चे को अनाज, हरी सब्जियां, फल, पत्तेदार सब्जियां दें, तथा बच्चे को समय के अनुसार टॉयलेट ट्रेनिंग, शौच जाने की प्रक्रिया को सिखाएं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बच्चों की समसामयिक बीमारियां विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रीतम कुमार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत परगांवकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 और 33 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर आधारित विशेष कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा बांसुरी वादन। कलाकार होंगे निखिल दास। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:45 पर और सुबह 7:31 पर आप सुन सकेंगे संतूर वादन। कलाकार होंगे कुमार सारंग चौधरी। कानून और हम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। गैर फिल्मी गीत और गजलों के कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गजल। कलाकार होंगे उषा टंडन और राहत अली। इसी कार्यक्रम में दिन 12:30 पर आप सुनेंगे गीत। कलाकार होंगे अलका याग्निक और शब्बीर कुमार। शाम 7:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर कलाकार होंगे गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें बातचीत के अलावा आप सुनेंगे गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी के गाए लोकगीत। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे आज की बात, मार्गदर्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

0: महिलाएं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन 1:15 पर, जिसमें चर्चा गीत संगीत के साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर शशिबाला सिंह का काव्य पाठ। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 2:30 पर। दिन 11:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 10:00 झंकार में, शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रस रंग में और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45 पर, और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि, या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः, क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्यसीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर् जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विक स्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितम् यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनययोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युत्तन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतर तंत्रांश वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं संचालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्ना

नमस्कार, सुप्रभात बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस की सुबह सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक एहसास है। वो घाट पर सुबह बनारस की आरती, वो कचौड़ी जलेबी की महक, और वो चाय की अड़ी पर चाय के कुल्हड़ के साथ देश दुनिया की राजनीति पर होने वाली गर्मा गर्म बहस, यही तो है हमारे बनारस का असली मिजाज। यहाँ की सुबह सिर्फ वक्त नहीं बदलती, लोगों के मिजाज बदल देती है। दोस्तों, आज तारीख है 15 जुलाई सन 2026। आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और जानते हैं साल 2026 की थीम क्या है? इस बार की बेहद खूबसूरत थीम है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि साझा भविष्य के लिए कौशल। कितनी गहरी बात है ना, साझा भविष्य। इसका मतलब है कि आज हम जो हुनर सीख रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे अकेले की तरक्की के लिए नहीं है, वो इस पूरे समाज, इस पूरे देश और हमारी इस प्यारी काशी के साझा भविष्य को संवारने के लिए है। जब बात स्किल की आती है तो मुझे लगता है कि बनारसी युवाओं को ये हुनर गॉड गिफ्टेड है। यहाँ की मिट्टी में ही हुनर भरा पड़ा है। वो कबीर का ताना बाना हो, बनारसी साड़ी की जरी का काम हो, लकड़ी के अद्भुत खिलौने हो, या फिर संगीत की वो विरासत हो जिसने दुनिया को मंत्रमुग्ध किया है। लेकिन दोस्तों, आज 2026 का ये दौर हमसे कुछ और भी मांग रहा है। इस साझा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने पारंपरिक हुनर के साथ साथ डिजिटल स्किल्स, एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को भी अपनाना होगा। जिंदगी में ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है। जिस दिन आपने ये सोचकर कुछ नया सीखना बंद कर दिया ना, समझिए आगे बढ़ना बंद कर दिया। अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि हुनर है तो कद्र है, और हुनर से ही हमारा कल है। अब हुनर की बात चली है तो देखिए ना, हमारा बनारस खुद को कैसे इनोवेटिव तरीके से रीइन्वेंट कर रहा है। अभी हाल ही में हमारे बनारस को स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि काशी देश का पहला ऐसा शहर बन रहा है जहां पूरे शहर का एक 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी काशी का हूबहू 3D मॉडल, जिससे यहाँ का ट्रैफिक

सुरक्षा और विकास और भी हाईटेक होने जा रहा है। यही नहीं, अभी हाल ही में बनारस के लिए हजारों करोड़ रुपए के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर्स और गंगा नदी को एक बड़े रिवर ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोचिए, जो काशी हजारों साल पुरानी है, वो आज 2026 में सबसे आधुनिक और इनोवेटिव शहरों की कतार में सबसे आगे खड़ी है। ये है हमारे बनारस का नया पावर हाउस, अंदाज भी, विरासत भी और विकास भी। आज हमारा बनारस न सिर्फ क्रूज टूरिज्म में दुनिया भर में नाम कमा रहा है, बल्कि यहाँ के युवा अब डिजिटल और ग्रीन इनोवेशंस में भी कमाल कर रहे हैं। घाटों की सफाई से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट और टूरिज्म गाइडेंस तक में AI और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। यही तो खूबसूरती है काशी की। हम अपनी जड़ों को भी थामे रखते हैं और आसमान छूने का भी हुनर जानते हैं। तो चलिए, अपने भीतर के हुनर को जगाते हैं, साझा भविष्य का संकल्प लेते हैं और अपने शहर को नई ऊंचाइयां छूते हुए देखते हैं। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद हम बात करेंगे अपनी काशी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उसकी महिमा के बारे में। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस।

वेलकम बैक बनारस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस शिखा के साथ। दोस्तों, जब हम काशी की बात करते हैं तो जुबा पे सबसे पहले महादेव का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शिव की नगरी में एक ऐसा समय भी आता है जब पूरी काशी नारायण के रंग में रंग जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काशी के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मेले की। चलिए आज आपको रेडियो की लहरों पर सैर कराते हैं उस इतिहास की, जिसने पुरी के भगवान जगन्नाथ को हमेशा हमेशा के लिए हमारी काशी का बना दिया। दोस्तों, काशी में रथ यात्रा मेले का इतिहास लगभग 220 से अधिक वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते की जीती जागती मिसाल है। बात है 17वीं-18वीं शताब्दी की। पुरी के भगवान जगन्नाथ के परम भक्त स्वामी डोमन जी ब्रह्मचारी काशी के 80 क्षेत्र में रहते थे। वो हर साल आषाढ़ महीने में भगवान के दर्शन के लिए पुरी जाया करते थे। कहते हैं ना, उम्र के आगे शरीर कभी कभी हार मान जाता है। जब वो वृद्ध हो गए तो पुरी जाने में असमर्थ हुए और व्याकुल होकर यहीं पर तड़पने लगे। उन्होंने अन्न जल

त्याग दिया। तब उनके इस निश्चल प्रेम को देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ब्रह्मचारी रो मत, मैं स्वयं काशी आ रहा हूँ। गंगा किनारे 80 के पास बेनी माधव के बाग में मेरी प्रतिमाएं प्रकट होंगी। और बनारस बिल्कुल वैसा ही हुआ। संवत 1859 में ठीक उसी जगह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह प्रकट हुए। तभी से काशी में इस भव्य मेले और रथ यात्रा की नींव पड़ी। अब सुनिए इस यात्रा की सबसे अनोखी बात। पुरी में तो भगवान विशाल काठ के रथों पर चलते हैं, लेकिन काशी में भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा निकाली जाती है। 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर से जब डोली पर सवार होकर भगवान निकलते हैं तो उनके स्वागत में हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ये मेला पूरे 3 दिनों तक चलता है। जिस रास्ते से प्रभु का रथ गुजरता है उसे आज पूरा बनारस रथ यात्रा चौराहा और रथ यात्रा मार्ग के नाम से जानता है। इन 3 दिनों के लिए ये पूरा इलाका जैसे एक अलग ही लोक में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, खिलौने, झूले और बनारस का अल्हड़पन। और भाई, बनारस का मेला हो तो खान पान का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। काशी की रथ यात्रा का एक सबसे बड़ा आकर्षण है करारी मीठी नान खटाई का भोग। इन 3 दिनों में आपको पूरे रथ यात्रा क्षेत्र में मिट्टी के तंदूरों पर ताजी नान खटाई सिकती हुई दिख जाएगी, जिसकी सोंध ही महक हवा में तैरती रहती है। भक्त भगवान को इसी नान खटाई का भोग लगाते हैं और प्रसाद स्वरूप चाव से खाते हैं। तो श्रोताओं, ये है हमारी काशी की खूबसूरती, जहां महादेव के आंगन में नारायण खुद अपने भक्त के लिए खींचे चले आते हैं। दोस्तों, काशी की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये ओडिशा और उत्तर प्रदेश की संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है। इन 3 दिनों में पूरा 80 और रथ यात्रा का इलाका एक जीवंत उत्सव में बदल जाता है। मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर शाम होते ही ओडिशा के पारंपरिक कीर्तन और उत्तर प्रदेश के सोहर और कजरी गूंजने लगते हैं। जब भगवान जगन्नाथ की पालकी चलती है तो आगे आगे काशी के डमरू दल अपनी थाप से समा बांध देते हैं। ये देखना अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और बनारसी हस्तशिल्प के सैकड़ों स्टॉल लगते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा भारत सिमटकर काशी के इस कोने में आ गया हो। अगर आप भी इस दिव्य महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दर्शन का जो सबसे अच्छा समय है ना, वो जरूर सुन लीजिए। सबसे जो उत्तम समय है वो है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। इस दौरान मौसम भी सुहाना हो जाता है और भगवान की विशेष आरती होती है। पालकी यात्रा के दौरान जब प्रभु नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो उनका ओज देखने लायक होता है। चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट, भक्तों की भारी भीड़ और ठंडी हवाओं के बीच गूंजते मंत्र इस समय को बेहद जादुई बना देते हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसके बिना बनारसी मेला अधूरा है, स्वाद। काशी की रथ यात्रा में नान खटाई का भोग चढ़ाने की परंपरा बेहद अनोखी और सदियों पुरानी है। मान्यता है कि जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं। इस दौरान उन्हें केवल काढ़ा और सादा पथ्य दिया जाता है। जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर गर्भगृह से बाहर आते हैं तो उनका मुंह मीठा कराने के लिए सुपाच्य और सोंधी नान खटाई का भोग लगाया जाता है। मैदा, सूजी, घी और चीनी से बनी ये नान खटाई मिट्टी के पारंपरिक तंदूरों पर ठीक मेले में बिल्कुल लाइव बनाई जाती है। गरम गरम मुंह में घुल जाने वाली ये नान खटाई भगवान को चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। इसके साथ ही लौंगलता और बनारसी चाट का दौर भी मेले में चरम पर होता है। तो श्रोताओं, धर्म, संस्कृति और स्वाद का ऐसा त्रिवेणी संगम आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी काशी में ही मिल सकता है। अब भाई, हुनर और विकास की बातों के बीच दिल तो आखिर बनारसी ही है ना, और बनारसी दिल बिना मेले त्योहारों के धड़क ही नहीं सकता। तो आज 15 जुलाई की शाम को बनारस की गलियों में ठाकुर जी की दिव्य

काल की यात्रा और भव्य झांकी दर्शन होने जा रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ खुद अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। और हाँ, कल यानी 16 जुलाई से शुरू हो रहा है काशी का वो ऐतिहासिक 200 साल से भी ज्यादा पुराना रथ यात्रा मेला, जिसका इंतजार हर बनारसी को पूरे साल रहता है। रथ यात्रा चौराहे का वो अद्भुत नजारा, चारों तरफ जय जगन्नाथ का गूंजता हुआ वो पावन जय घोष, बच्चों के लिए लकड़ी के रंग बिरंगे खिलौने, और हाँ वो गर्मा गर्म मुंह में घुल जाने वाली बनारसी स्पेशल नान खटाई की खुशबू। जब प्रभु का विशाल रथ काशी की सड़कों पर खींचेगा तो मानो पूरी दुनिया ही भक्ति के इस महासागर में डूब जाएगी। तो बनारस आप भी जरूर जाइएगा भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस रथ यात्रा मेले में। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 28 जुलाई को दीक्षा समारोह होगा। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण पहल की रूपरेखा तैयार की है। एक तरफ जहां मुख्य परिसर के साथ ही संबद्ध महाविद्यालयों के मेधावी शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छात्राओं और उनकी माताओं से सीधे संवाद करेंगी। दीक्षा समारोह के मुख्य कार्यक्रम के बाद विश्वविद्यालय में माँ बेटी सम्मेलन होगा। वाराणसी में अमीर और गरीब के बच्चों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर चल रही 3 दिवसीय पदयात्रा का आज 15 जुलाई 2026 को समापन होने जा रहा है। चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी शिक्षा हो समान के संकल्प के साथ इस यात्रा में भारी संख्या में समाजसेवी, शिक्षक और युवा संगठन शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन का व्यापक असर स्थानीय स्तर पर देखा जा रहा है। सिग्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुश्ती ट्रायल आज से। खेल जगत से आ रही प्रामाणिक खबर के अनुसार वाराणसी के सिग्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुश्ती में प्रवेश के लिए आज 15 जुलाई से विशेष चयन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। ये चयन प्रक्रिया आज से शुरू होकर आगामी 16 और 17 जुलाई तक लगातार 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें पूर्वांचल और राज्य भर के उभरते पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं इतिहास में 15 जुलाई की खासियत। 15 जुलाई भारतीय इतिहास का वो दिन है जब भारतीय सेना के महान अफसर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1912 को उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। 1611 में आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जयसिंह का जन्म हुआ था। उनको मिर्जा राजा के नाम से पुकारा जाता था। 1903 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ था। वो सुधारवादी नेता थे और तमिलनाडु के विकास के लिए काफी काम किए थे उन्होंने। 1926 में बॉम्बे, जो अब मुंबई है, उसमें पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई थी आज के ही दिन। 1937 में हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभाष जोशी का जन्म आज के ही दिन हुआ था। 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था आज के ही दिन। तो श्रोताओं, अब इसी के साथ ही कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो चला है। शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी

0: कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने के साथ

0: और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर, लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। कल लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है।
3: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहाँ हुई है।
2: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार और उद्योगों से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने कल लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी। एक रिपोर्ट।
4: उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर

0: दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञान वापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक हुई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञान वापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस की टीम आज उनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर कल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण में OST महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र व अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है जेई के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहले नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कल इस संबंध में हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। प्रदेश में TB उन्मूलन की प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में कल एक टेक्निकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े देश भर के 60 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम से कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और जन भागीदारी प्रदेश की टीबी उन्मूलन यात्रा के मूल आधार हैं। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज और विकास से जुड़ा साझा लक्ष्य है। एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने कहा कि एम्स गोरखपुर टीबी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: SOP संशोधन के अनुसार अब होमस्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने कल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्य

0: आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लोकेश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं संतूर वादन। कलाकार हैं कुमार सारंग चौधरी, राग है नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं सिद्धांत मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे संतूर वादन। कलाकार थे कुमार सारंग चौधरी, राग था नट भैरव। आपके साथ तबला संगति थी सिद्धांत मिश्रा की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा।

0: का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविकी जहाज

0: अनुसार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं, केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़

रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने अपनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदा आज से अमल में आ गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है, जिसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशावर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे भारत और बरतानिया की दिफाई शराकतदारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के आवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरका अजम का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए ताबनाक इक्तसादी शराकतदारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे ताउन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशावर अफराद और उनके आजिरों को फायदा हासिल होगा। ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग में सड़कों, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयले और मेहनत के शोबों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक 19 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। जमीन के कब्जे में लेने, बाजावादकारी, जंगलात से मुतालिक मंजूरियों और बैन महकमा जाति तालमेल से मुतालिक मामलात को हल करने की हिदायत दी गई ताकि प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। मरकजी वजीर ने अमल दरामद में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्टों पर नजर रखने के रियासती सतह के ग्रुप कायम करने की भी तजवीज रखी। वजीर मौसूफ ने फसलों में तनोव लाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तोसी देकर किसान क्रेडिट कार्ड की तादाद में इजाफा करके कुदरती ज़राअत, डिजिटल एग्रीटेक और गज़ाइयत में इजाफे के प्रोग्रामों को फरोग देकर ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के इकदाम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरकजी और रियासती मिलकर काम करेगी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में अहम और स्ट्रेटेजिक माजनियाती ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेंगे। कानों की वजारत ने कहा है कि ये नीलामी 9 रियासतों में वाकई 20 अहम और स्ट्रेटेजिक माजनियाती ब्लॉक्स के लिए होगी, जिनमें 13 नए निशानजद ब्लॉक्स और दूसरी मरतबा पेश किए जाने वाले 7 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये माजनियात साफ सुथरी तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, खाद, दिफा और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए अहमियत के हामिल है।

0: अदालत ने नीलामी के 7 मरहलों की तकमील समेत 88 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स में से 56 की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तरह 63% से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वज़रा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वज़रा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उन्वान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर के लिए, के तहत यह इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वज़रा समाजी तहफ्फुज़ को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाज़ाब्ता शक्ल देने, ख़वातीन की शुमूलियत को बढ़ाने और अफरादी क़ुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलानियों को गौर खौस के बाद अपनाया जाएगा। इस एलानिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियत, रोजगार पर तआवुन को तकवीत देना है। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नाबा जोबन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदाम का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वजीर आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जहां इख्तिराई टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी पर मबनी मसनूआत और सनती तरबियती इदारों, ITIs, तरबियती इदारों और जेर तरबियत अफराद के जरिए तैयार करदा प्रोजेक्ट का मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत ने 19 जैली शोबों के लिए मुल्क का खिदमात की पैदावार का पहला आजमाइशी इंडेक्स ISP जारी किया है, जिसमें पहली बार ऐसा है कि बाकायदा खिदमात के शोबे में मुख्तसर मुद्दत की सरगर्मी का माहाना पैमाना फराहम किया गया है। इस पहले इंडेक्स में 2024-25 को बुनियादी साल मानते हुए अप्रैल 2026 को भी शुमार किया गया है और भारत के खिदमात के शोबे के तकरीबन 60% हिस्से को शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग आबनाए हुरमुस से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनाब ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमरीका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि वो एक मुआहदा कर ले, वरना वहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैम पर, जहां कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे, हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुंचाया है। भारत ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी और तिजारती बहरी जहाजों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में नमनिकानों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी और आबनाए हुरमुस से तिजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आबनाए हुरमुज में 2 मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासिरा खित्ते में काम करने

0: भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्द अमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में आला सतही बैन वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खित्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरान के लिए मखसूस लायजन अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आदि गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कीमिया और खाद की वजारत, भारतीय बहरिया, जहाजरानी के डायरेक्टोरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाकई भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाईयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, बैनुल अक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जेर कब्जा पूरे इलाके में ये मुजाहरे खित्ते में पाकिस्तान के दीरीना कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वहशियाना कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें दसियों शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ खित्ते में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू नाफिज है। नीज मवासलात का सिलसिला पूरी तरह मुनकता हो गया है। अखलीती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा। वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया। समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफे अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई इसलाहत का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान, अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपीय यूनियन का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, बरतानिया भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी

0: के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658
6: 0542227658।
8: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। आज है 15 जुलाई और आज बात उस शख्स की जिसकी आवाज से सिनेमा हॉल के पर्दे कांप जाते थे। वो विलेन बनकर आया लेकिन हीरो पर भारी पड़ गया। पर्दे पर खामोश, इस शब्द के साथ हम जिसे पहचानते हैं वो है फिल्म जगत के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी। और आज है उनका जन्मदिन। तो आज की मधुरिमा समर्पित है बुलंद आवाज और अपने अनोखे अंदाज के लिए प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा पर।

बिहार के पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा चार भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन शत्रुघ्न के मन में सिनेमा बसता था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज छोड़ दिया और प्रवेश लिया पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। वहां उनके चेहरे के कट मार्क्स के निशान को देखकर लोग कहते थे, इस चेहरे के साथ एक्टर कैसे बनोगे? लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, जो आगे चलकर उनकी सिग्नेचर स्टाइल बना।

0: मदरिमा में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच।

0: हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और आज बातें हो रही हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। साल 1969 में फिल्म प्यार ही प्यार से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी और गुलजार की मेरे अपने ने उन्हें पहचान दी, लेकिन वो सुपरस्टार बने साल 1976 में आई फिल्म काली चरण से। शत्रुघ्न जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो फिल्म में विलेन के रोल करते थे, लेकिन जनता हीरो से ज्यादा सीटी उनके लिए बजाती थी। काला पत्थर, दोस्ताना, शान जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही।

फिल्मी पर्दे पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने के बाद उन्होंने राजनीति के मैदान में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबा सफर तय किया। वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और संसद सदस्य भी रहे। सन 2017 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और कला और राजनीति में उनके योगदान के लिए उन्हें यूके की संसद में भी पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बुलंद आवाज और अनोखे अंदाज के दम पर भारतीय सिनेमा और राजनीति के वो एक अनोखे सितारे बने जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि आपके पास प्रतिभा और बुलंद हौसला हो तो चेहरे का कोई निशान या दुनिया की कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आज उनके जन्मदिन पर पूरे आकाशवाणी वाराणसी

0: परिवार की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं।
1: पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा
2: तो फिर
1: हमको तो

0: शेख चिल्ली का ये ख्वाब हर एक जर्रे की ये जुर्रत छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: देखो कहे बाप तो मैं बाप कहूंगा, फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे

0: उल्लूरे, अबे उल्लू, तू मरने को ले आ पानी भर चुल्लू, मुझे अपनी बेटी के लिए लगाम चाहिए, ना के कोई चोरू का गुलाम चाहिए।
1: वल्ला बुजुर्गवार की ये बात सही है, तुलसी ने भी रामायण में ये बात कही है।
0: क्या बात कही है लल्लू।

0: है किसी अच्छे खानदान का है।
1: सुन ली अपने बाप की बात, बदल गए हैं अब हालात। इन्होंने सोए शेर को जगा दिया है, भटके हुए को सही रास्ते पे लगा दिया है।

आज मधुरिमा का ये सुरेला सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव के साथ। फिर मिलेंगे किसी दिन कुछ और सुरेले गाने और बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरहूब हुसैन का।
1: जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमरोहा में 30 जून को जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हसनपुर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि गुलाब देवी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व, राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने संबोधन में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी चिंतन, संगठन निर्माण में उनके योगदान तथा राष्ट्र प्रथम की भावना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अमरोहा में 8 जुलाई को मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ एवं विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी ₹1200 का अंतरण कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 8000 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 560 कुल 8560 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों, रसोइयों एवं अन्य पात्र कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने जनपद के कुछ शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षकों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की गई। अपने संबोधन में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि शिक्षा ही देश की उन्नति और विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने 7 जुलाई को अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के गौ आश्रय स्थलों एवं गौवंश संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उपाध्यक्ष ने गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता के लिए सभी गौ आश्रय स्थलों पर भूसा भंडारण, क्रय विक्रय, दान स्टॉक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सुव्यवस्थित रखने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर पल निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा,
2: गो वंश को छोड़े ना, अगर किसी प्रकार की समस्या है अपने कोटे पर नहीं रख सकते हैं तो स्थानीय गौशालाओं में संरक्षित कराने का प्रयास करें। प्रत्येक गो वंश के लिए ₹50 भरण पोषण के लिए सरकार देती है। अकेला ऐसा राज्य जिसमें 16 लाख से ज्यादा गो वंश हमारे 7,700 गौशालाओं में संरक्षित किए गए हैं। 1,67,000 से ज्यादा गो वंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों के कोटे पर गौ माता गई है। आपके माध्यम से आह्वान करना है, गौ माता को अपने कोटे पर बांधे, सेवा करें। भारत की संस्कृति का मूल आधार गौ माता।
1: पहाड़ों पर हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के बाद अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। जिले के गंगाधाम तिगरी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा तट पर झोपड़ियां डूब गई हैं, जबकि खादर क्षेत्र में गंगा तट किनारे बसे एक दर्जन गांवों के खेत व रास्ते जलमग्न हो गए हैं। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों को आवागमन और पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने बताया,
3: क्षेत्रीय एसडीएम की अध्यक्षता में टीमें खुद ही जा रही हैं बाढ़ से प्रभावित गांवों में और लोगों को राशन का अरेंजमेंट करा रही हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लोगों को शिफ्ट कराना पड़ सकता है, तो उधर शरणालय की हमारी तैयारी है। और जैसे ही बाढ़ का स्तर इस लेवल पे पहुंचता है कि वो हाई फ्लो लेवल को क्रॉस करता है, तो हम तुरंत उनको शिफ्ट भी कराएंगे। हर डिपार्टमेंट

0: इसमें सेंसिटाइज है, हर किसी के रोल्स डिफाइंड है, वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस निरंतर जारी रख रहे हैं।
1: वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत अमरोहा में 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग सूर्य प्रकाश पाल, विधायक राजीव तरारा, जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। अपने संबोधन में सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोच्च रखा गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति माँ को समर्पित करते हुए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं एवं उसकी देखभाल करें।
2: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
3: जनपद कानपुर देहात में प्रदेश राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रविवार को जनपद के केंद्रीय विद्यालय नबीपुर में आयोजित बृहद वृक्षारोपण अभियान में

0: जनपद के केंद्रीय विद्यालय नबीपुर में आयोजित बृहद वृक्षारोपण अभियान में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। जनपद में बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और अन्य पात्र कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कानपुर देहात में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अजीत पाल ने इको पार्क में मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। कानपुर देहात में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ब्लॉकों और विद्यालयों में योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा गया। राज्य मंत्री अजीत पाल ने कहा कि ये योजना प्रभावी संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। पात्र शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। साथ ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया तथा अन्य पात्र कार्मिक और उनके आश्रित अब देश भर के आयुष्मान भारत से समृद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अध्यापक अनंत त्रिवेदी ने बताया कि
1: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यालय में कार्य कर रही रसोइयां इस योजना के अंतर्गत लाए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ऐतिहासिक दिन है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए।
0: घाटमपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भोगनीपुर से पूर्व विधायक रहे प्यारे लाल सखवार का बीते बुधवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता दल तथा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सामाजिक न्याय और दलित समाज की मजबूत आवाज माने जाते थे। कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित इको पार्क माती में आयोजित मुख्य कार्यक्रम सहित जनपद के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। पूरे जिले में योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य, फिटनेस और जन जागरूकता का संदेश दिया गया। जनपद में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। धान, मक्का और अन्य खरीफ की फसलों की बुआई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनने से कृषि कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कानपुर देहात में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने जन संवाद, व्यापारी सम्मेलन, किसान चौपाल, योग शिविर, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, आयुष्मान कार्ड वितरण तथा लाभार्थी संपर्क जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन से संवाद किया तथा सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। पूरे अभियान के दौरान जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कानपुर देहात के एक दिव्यांग युवक ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ लेकर धीरज कुमार ने अपना उद्योग स्थापित किया और आज वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि 15 अन्य लोगों को भी रोजगार देकर समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण और सरकारी सहायता प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू किया। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर उनका छोटा व्यवसाय आज एक सफल उद्यम का रूप ले चुका है। धीरज कुमार का कहना है कि यदि सरकार की इस योजना का सहयोग नहीं मिलता तो वो अपना उद्योग स्थापित करना आसान नहीं था। योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता मिली जिससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। आज उनका उद्यम लगातार आगे बढ़ रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। धीरज का मानना है कि यदि युवा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लेकर उनका लाभ उठाए तो वे नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने वाले बन सकते हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोई व्यक्तियों के समय।

0: कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार बेबी शावा पुत्री वकील अहमद धनुआ अंसारी थाना रामपुर जनपद जौनपुर की निवासी हैं। बेबी शावा की उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ एवं चेहरा गोल है। ये दिनांक 9 मई 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने काले रंग का समीज शलवार एवं सफ़ेद दुपट्टा पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना रामपुर जनपद जौनपुर को सूचित करें। थाना मछली शहर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार शालू मौर्या पुत्री गुलाब चंद मौर्या मोहल्ला पूरा जीआई थाना मछली शहर जनपद जौनपुर की निवासी हैं। शालू मौर्या की उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, रंग गोरा एवं चेहरा लंबा है। विशिष्ट पहचान इनके ठुड्डी के नीचे कटे का निशान है। शालू मौर्या दिनांक 23 मई 2026 दिन 1 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने हल्के पीले रंग का सूट शलवार पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना मछली शहर जनपद जौनपुर को सूचित करें। थाना लाइन बाजार कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार काजल यादव पुत्री प्रेमचंद यादव पालपुर मुरादगंज थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर की निवासी हैं। काजल यादव की उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 20 मई 2026 रात्रि 1 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग का शलवार सूट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर को सूचित करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 से आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: में कोई बात हुई है। इसी दिलकश ख्याल के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं लफ्जों की खुशबू और जज्बातों की महफिल। हम डूबेंगे शायरी के उस समंदर में जहां हर लफ्ज सीधे दिल को छूते हैं। जी हाँ, अदब, जज्बात और यादों के खुसूसी प्रोग्राम तरही शेरी नशिस्त का एहतमाम आज हमने अपने स्टूडियो में किया है। सामिन, जब भी मौसम बदलता है तो अपने साथ कई सौगातें लाता है, लेकिन एक मौसम ऐसा है जिसका इंतजार अदब की दुनिया से लेकर आम इंसान तक सबको रहता है, और वो है फलों का राजा आम का मौसम। उर्दू शायरी में आम को लेकर जो दीवानगी रही है वैसे शायद ही किसी और चीज के लिए हो। तो आज की हमारी इस नशिस्त में मिसराए तरह का शेर है उर्दू के मशहूर तंजो मजाह के उस्ताद शायर अकबर इलाहाबादी का। उन्होंने क्या खूब फरमाया था कि नामा न यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। तो इस शेर पर अपनी शायरी पेश करने के लिए हमारे मुअज्जिज मेहमानान हमारे दावत नामे पर शिरकत फरमा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान हैं मोहतरमा ताजवर सुल्ताना, जनाब अहमद इलाहाबादी और जनाब जलाल फूलपुरी। आप सभी मेहमानान का हमारे स्टूडियो में समीमो कल्ब से खैर मकदम है। सबसे पहले मैं इस महफिल की इकलौती खातून शायरा मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से पुरखुलूस गुजारिश करूंगी कि वो अपने कलाम से सामेन को महजूज करें।
1: मौजूद सामेन, आदाब। गजल का मतलब हाजिर कर रही हूँ, मुलाजा कीजिएगा।
2: इशारा

इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। और ये शेर भी खास तौर से मुलाहजा कीजिएगा, क्या जायका ताम का लज़्ज़त जुबां पे है, क्या जायका ताम का लज़्ज़त।

शुक्रिया। काजू न मुझे किशमिश बादाम भेजिए। आखिरी शेर मुलाजा कीजिएगा, मुझको यकीन है दर से वो वापस न करेंगे, मुझको यकीन है दर से वो वापस न करेंगे, मुझको यकीन है दर से वो

0: ये
1: वाह
0: मक्ता हाजिर कर रही हूँ।
1: जी, ताहो इशारा।
0: उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है ऐसा ताज,
1: उसने
0: उसने
1: मेरे भरोसे
0: मेरे
1: को तोड़ा है
0: भरोसे
1: ऐसा
0: को
1: ताज।
0: तोड़ा है ऐसा ताज, उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है
1: ऐसा
0: ऐसा
1: ताज
0: ताज, क्या फायदा उसे दुआ सलाम
1: जी,
0: भेजिए,
1: अच्छा
0: क्या
1: है मक्ता
0: फायदा।

0: जी। बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम। सामिन, इसके बाद एक और मोतबर शायर हमारे दरमियान हैं, जनाब अहमद इलाहाबादी। उनसे मैं पुरखलूस इल्तिमास करूंगी कि वो अपने कलाम से सामिन को महजूज करें।
2: अपलाज कर रहा हूँ, समाज कीजिए। लबरेज़ हो जो मैं

0: आप कुछ नाम भेजिए मेरी वफा का। आप शेर समातम है, तजमीन का मिश्रा है।
1: निशाद
0: इस बार हो सके तो मुलाकात कीजिए,
2: इस बार हो सके तो मुलाकात कीजिए,
0: इस बार हो सके तो

0: आप बुझिन आमु भेजी। शेर समाज सुनना है
1: जी, इरशाद
2: इरशाद।
0: जो साथ साथ गुजरे हैं लम्हे हैं।

0: वो वही
1: शाम
0: भेजिए
1: भेजिए
0: गर हो सके तो सुबह
1: वही शाम भेजिए
0: वही शाम भेजिए गर हो सके तो सुबह वही शाम भेजिए गर हो सके तो सुबह। मख्तार जैद
1: जी
0: हमको जो याद कीजिए आ जाएं सर के बल
1: हमको जो याद कीजिए आ
0: हमको
1: जाएं सर के
0: जो
1: बल
0: याद कीजिए

0: कह रहा है ये लंगड़ा यहाँ वहाँ, अब के गिनीज बुक में मेरा नाम
1: भाई
0: भी।

مفلس ہو یا غریب ہو یا شاہ یا غلام، مفلس ہو یا غریب ہو یا شاہ

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
5: लोक संगीत में आज के कलाकार हैं गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

अभी आपने सुना देवी गीत, कलाकार थे गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए इन्हीं के स्वर में लाचारी।

0: लाचारी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
3: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम झंकार में सबसे पहले सुनिए बरसात की रात फिल्म से ये गाना। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और कमाल बरोड की, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत है रोशन का।

अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म तुमसा नहीं देखा से ये गाना। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत है एसडी वर्मन का।

जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे।

झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छोटे नवाब से। लता मंगेशकर की आवाज़, शब्द रचना शैलेंद्र एवं धुन बनाई है शैलेंद्र ने।

अभी आपने सुना फिल्म छोटे नवाब से ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, शब्द रचना शैलेंद्र की एवं धुन बनाई थी आरडी वर्मन ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आवारा से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: झंकार में अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में फिल्म बम्बई का बाबू से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है SD वर्मन ने।

अगला गाना आप सुनिए, फिल्म पड़ोसन से। आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार हैं राजेंद्र किशन और संगीतकार हैं आरडी वर्मन।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अब सुनिए परिवार फिल्म से ये गाना, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना है गुलशन बावरा की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। गीतकार हैं कमाल अमरोही और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

अब सुनिए फिल्म अमर से ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार शकील बदायूनी और संगीत है नौशाद का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार, और अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
3: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल, और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: अभी आपने सुना था फिल्म मुगले आजम से ये गाना। आवाज थी लता मंगेशकर की और शब्द रचना शकील बदायूनी की और संगीत नौशाद का था। झंकार में अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म चलती का नाम गाड़ी से ये गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं ST वर्मन।

अगला गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरैया की आवाज में, फिल्म है दास्तान, शब्द रचना है शकील बदायूनी की और संगीत है नौशाद का।

झंकार में ये आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शागिर्द से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज, वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार।

तो दोस्तों आपको तो पता है इस कार्यक्रम का फॉर्मेट फॉर्मेट यही है कि जो हमारे पास पहले से मेल आए हुए होते हैं हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जो श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है वो मेल तो भेजेंगे, लेकिन जो आज आप मेल भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो आप समझ गए ना, तो आगे शामिल होने के लिए आपको मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको बताते हैं हमारी मेल आईडी क्या है। हमारी मेल आईडी है AIRVNSFGEXP@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए AIRVNSFGEXP@gmail.com। इस आईडी पर आप मेल भेजेंगे, उसे हम अगले कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। तो आपके जितने ढेर सारे मेल आए हुए हैं, मेल का जो समंदर है जानते हैं कितना बड़ा है। अभी मैंने नोटिस किया पूरे मेल अभी जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन शो कर रहा है 71,519 मेल हमारे पास हैं। जी हाँ, 71,519 मेल, आप समझ रहे हैं ना। और इस मेल के समंदर में से आपके मेल के जो छोटे से कुछ मोतियों को छांट के हमें लाना पड़ता है, क्योंकि ये 71,519 मेल यदि हम पढ़ने लगेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, कुछ मेल्स को हमने छांट भी लिया है। तो देखते हैं पहला मेल किसका शामिल हो रहा है। ये है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज व बिट्टा बजाज का भी मेल हमें मिला है। नूर महल महेश्वरी सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफात जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने मेल किया है ग्राम पीपल लोडसर गांव छत्तीसगढ़ से। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राज जाधव। ऑरेंज सिटी का नाम आते ही संतरे की याद तो आती है ना दोस्तों। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन संतरा थोड़ा सा महंगा मिल रहा है अभी, लेकिन अभी इसका सीजन आएगा तो फिर सस्ता होगा। लेकिन संतरे के जो आप कल्पना कर रहे हैं ना, उसको अपने कल्पनाओं में स्वाद को ले लीजिए, मज़ा आएगा। और राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने भी संदेश भेजा है। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये मेल हमें भेजा है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, अन्विका, तनुश्री। पीहरा बाजार झुमरी तिलिया गिरडी से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया टूसी, आयुषी और अनुरुद्ध व बसंतलाल साव। नागर कोहरा ग्राम जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से श्रीमती सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया और लल्ला चौरसिया। बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया। नवाबगंज कानपुर से ये मेल हमें प्रेषित किया है सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहराज जहां ने मेल हमें भेजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का गीत, हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप ही हैं जो हमें मेल भेजते रहते हैं और मेल के जरिए हमसे जुड़े रहते हैं। तो कार्यक्रम में अगला मेल हम शामिल कर रहे हैं। हमारे ये श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा से।

एक मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और इन्होंने लिखा, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं, तो इसमें कोई शक तो नहीं है, आपको ये साबित नहीं करना है, आप वाकई नियमित श्रोता हैं हमारे। गांव नंगलखेड़ा पगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशवरी धानु खुराना। पटेल नगर मुगलसराय से ये संदेश में भेजा है शशि सिंह, आकाश सिंह, आस्था सिंह ने। ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, हरिमोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल, लक्ष्य बघेल और बल्लू दाऊ। कुछ मेल देख के अब लग रहा है कि कुछ हमारे नए श्रोता भी मेल भेज रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। अच्छा लगता है कि कुछ हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, श्रेष्ठ कारेगांवकर, समरजीत कारेगांवकर। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने लदावली जिला मुरादाबाद से संदेश में प्रेषित किया है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कुमार राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहिन, तुबा आफरीन। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन्होंने लिखा है, माई रेडियो माई लाइफ, क्या बात है। माई रेडियो माई लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, और रेडियो को जिसने अपना दोस्त बना लिया, जिसने अपना जीवन साथी बना लिया, मुझे नहीं लगता है उसको किसी बात की कमी होगी, वो रेडियो आपके साथ हर पल हर क्षण आपके साथ होता है। ये संदेश हमें भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। परसमणि गांधी चौक बाड़मेरा राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान। और अगला संदेश हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा ने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अधिबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और पन्मानंद आर्य। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशाओं के सावन में। जी हाँ दोस्तों, आशा और उम्मीद हम यही करते हैं कि इस बार सावन बेहतर होगा, और थोड़ी उम्मीद अभी कम हो रही थी लगातार, फिर मानसून ने कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमें लगता है, कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो सावन अच्छा होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। बारिश भी अच्छी होगी ऐसी भी उम्मीद करते हैं। चलिए देखते हैं अगला मेल किसने भेजा है। भेजा है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने।

ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय कुमार, प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडा ने। लिवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेन्द्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा।

रामपुर रामनगर वाराणसी से रंजित साधवानी, विनय साधवानी, पूजा साधवानी, हिमांशु साधवानी, हुमांशी साधवानी, सुधांशु साधवानी, डॉली साधवानी, विवान साधवानी और ईशान साधवानी ने भी मेल हमें भेजा है। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा का भी मेल हमें मिला है। पटेल नगर मुगलसराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह। ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। नाज मंजिल महसूल मसौड़ी सीतामढ़ी से ये संदेश हमें भेजा है। अक्रम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकाहत परवीन। पाढ़र कावड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बालहार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े, एकलव्य लोढ़े। मदरसा गेट भावपुर मणियाहो जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, चाचा चाची और पूरा परिवार। बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, चटकू और मटकू इनके प्यारे बेटे हैं। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार। चौसा गोला बक्सर से जयराम बिन सीता, मुन्नी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। गढ़मुक्तेश्वर काक दठेर की मढ़िया से राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी का भी मेल हमें मिला है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सानी, मोहम्मद अफजल मल्लिक। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर आप आए बहार आई। जी हाँ, ये नाम है इस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, इस शब्द रचना अनुमक्षी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कोयल क्यों गाएगी भाई? इसलिए गाएगी कि मौसम अच्छा हो रहा है ना? तो कोयल की कूख गूंजती रहेगी कार्यक्रम में आगे भी। कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे इस अंतराल के बाद।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल। और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: अंतराल के बाद फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है बड़ी गबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवी। ये दर्द श्री त्रिभुवननाथ मालवी अनमोल मालवी श्लोक ने। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुन जोशी। अपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाह परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। लिस्ट लंबी है। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्थिका, ऋषु, इलार, वीनस। चितबड़ा गांव बलिया से ये संदेश भेजा है जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का ने। ओबरा सोनभद्र से शुभम और आयुषी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरया, जालंधर, पंजाब से। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। एयरपोर्ट रोड बंद्रा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे। यहीं से स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, लड्डू चौधरी। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मार्क।

கண்டர் பேபி கிட்டோ. அனில் கட்டாரியா, மஞ்சு கட்டாரியா, நரேஷ் மல்ஹோத்ரா ஒரு கியான் பூஷன் ஷர்மா பானிபத் ஹரியானா சந்தேஷம் பிரேஷித் கே. கிராம் லசோடியா பாத்தா தசில் நரசிங்கட் ஜிலா ராஜ்கட் மத்திய பிரதேச கோவிந்த் வைஷ்ணவ் திவ்யா சுமன் கோமல் பரி கிருத்திகா ரமேஷ் சந்திர டாங்கி. जमानिया जिला गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल. गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल. जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल. आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर समीर का लिखा हुआ गीत संगीत, आनंद मिलिंद का आवाज, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की फिल्म बेटा. हमने कहा था ना कोयल, जी हाँ, अब कोयल से बोली सुनिए.

तो कोयल सी बोली, सुना आपने? निश्चित तौर पर पहले हम लोग जब सुबह उठते थे तो कोयल की बोली से ही उठते थे, लेकिन कुछ तो कम हुआ है इनका बोलना और सुनाई भी अब कम पड़ते हैं। और इसके लिए कारण कौन है? कारण हम सभी हैं ना। कोयल की आवाज़ इतनी प्यारी होती थी, लेकिन कहीं लापता होती जा रही कोयल। और इसके लिए फिर वही हम कहेंगे, अब तो थोड़ी सी बारिश हुई है, पिछले हफ्ते हमने बात की थी पौधे लगाने की, तो आप भी पौधा लगाना शुरू किए कि नहीं? मैंने तो लगाया, जी हाँ मैंने पक्का लगा दिया। और मैं सच कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक पौधा रोपित करते हैं और उसके संरक्षण का जिम्मा लेते हैं। पौधा लगाइए और उसके संरक्षण का जिम्मा भी लीजिए, जब तक वो पौधा वृक्ष न बन जाए तब तक जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए, अभी तक नहीं लगाया तो अब लगा दीजिए, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, और जब वृक्ष हो जाएंगे तो फिर कोयल की बोली हमें सुनाई पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगला मेल किसने भेजा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोको रानी। मुबारकपुर रुचिता की आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनिज सकीना, हसीना दिलशाद, शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान, ईदो कुमारी, इसरोल, बाड़मेर राजस्थान से ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लारोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से, रतिना त्रिपाठी, राखी, आर्या, एंद्री, ओमना सारंग, शिवांग, रोली, अदिति, माताजी, निर्मला त्रिपाठी। गणुका लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान। करोता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति। ग्राम भरती पोस्ट सकलडीहा चंदोली से इमरती यादव। गौ लक्ष्मी सासाराम गली नंबर 8B से कुमार गंगारती चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान, आर के सिंह चौहान। परवेज अहमद फागू सोनकर सुकुलपुरा वाराणसी से अशोक प्रजापति, आकाश अंजलि और कन्हैया प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से। पद्मा टाकिच नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक, मोनू, उन्नति, धनशनी, कीरत राय, बाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा माखीजा कुटुंब। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़।

कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओश्रिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं महबूबा फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम में अगला मेल भेजा है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। जिला नांदेड़ जैताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अनुराग फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का आखिर गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने वलीदपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती उषा देवी भारती दीपांजलि अनुराग दीप भगेलू यादव मास्टर राम समूच यादव।

0: चरगोडरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू, सिंधिक बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडोतकर और पुन्नु वडतकर। सुनिए अपनी पसंद पर कार्यक्रम के अंत में आन मिलो सजना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।
1: तो हम चलते हैं।

भाई चलना तो हमें भी पड़ेगा, इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।

0: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे?

0: सिंह जी, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाक से दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
1: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
1: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
1: जी,
0: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
1: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
1: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
1: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
1: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
1: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही।
1: जी,
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की।
1: जी,
0: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे।
1: जी,
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
1: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

0: सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
6: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
4: हाँ।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि

0: प्रधान देश है।
1: ओ
0: हमारे देश की लगभग 60 से 70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा,
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देस विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी, और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते।

0: चाहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं। मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया। ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना?
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ,

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा।

अच्छा है, तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में

0: तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
1: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
1: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
1: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
1: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों,

0: मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
1: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658,
2: 0542227658।
5: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं शब्बीर कुमार और अलका याग्निक। इनके सर्वसनीय ये गीत

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे शब्बीर कुमार और अलका याग्निक। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुमार सारंग चौधरी का संतूर पर बजाया राग मदमात सारंग। आपके साथ तबले पर संगति की है सिद्धांत मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे कुमार सारंग चौधरी का संतूर पर बजाया राग मदमात सारंग। आपके साथ तबले पर संगति की थी सिद्धांत मिश्र ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित हो रहा था।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का एक बजने को है, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित

0: करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम।
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार रेखा कुमारी पुत्री रामवंत खरवार निवासनी ग्राम जमुनीपुर थाना चंदौली जनपद चंदौली कहीं लापता हो गई हैं। रेखा कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, मजबूत शरीर है, बाल इनके लंबे और काले हैं। ये जब लापता हुई थी उसमें गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थी। रेखा कुमारी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। आंचल सिंह उर्फ रिमझिम, पिता का नाम मुन्ना सिंह, ये ग्राम सिरोहपुर तेंदुई थाना सकलडिया जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। आंचल सिंह उर्फ रिमझिम के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर की बनावट औसत है। ये जब लापता हुई थी उस समय सूट और सलवार पहने हुए थी। आंचल सिंह उर्फ रिमझिम के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। सौरभ कुमार उर्फ बंटी, पिता का नाम मनोज कुमार, ये ग्राम चतुर्भुजपुर थाना सकलडिया जनपद चंदौली के रहने वाले हैं, कहीं लापता हो गए हैं। सौरभ कुमार उर्फ बंटी की उम्र है 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुए थे उस समय टी शर्ट

और जीन्स पैंट पहने हुए थे। सौरभ कुमार उर्फ बंटी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित कर रहे। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। यह कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर निखिल दास का बांसुरी वादन प्रसारित होगा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। कानून और हम ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। रात 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी उषा टंडन और राहत अली। शाम 7:00 अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट। वार्ताकार होंगी परीक्षा मालू। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनेंगे गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी का गाय लोकगीत। इनका गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मार्गदर्शन में वर्तमान समय में युवाओं के लिए करियर में नए अवसर विषय पर शंकर श्रीवास्तव से बातचीत। अलावा इसके यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी चर्चा गीत संगीत जायका के अलावा डॉक्टर शशि बाला सिंह से काव्य पाठ। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:30 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मंदिर अतिया गबन केस में इंसदाद बंदुदमानी अदालत ने मुजमीन रामाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे का पुलिस रिमांड दे दिया है। पुलिस टीम आज उनको अपनी तहवील में लेकर पूछताछ करेगी। दरियस्ता अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल मुलजिम लोकेश मिश्रा के जेर तामीर मकान पर हतमी नोटिस चस्पा किया। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के OSD महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें 15 जुलाई तक नक्शा और दीगर जरूरी दस्तावेजात के साथ हाजिर होने का हतमी मौका दिया गया है। मिश्रा सिंह ने कहा कि अगर मुकर्रा वक्त तक जवाब या दुरुस्त दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। रियासत के चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने तमाम हुकाम और महकमों को EV चार्जिंग स्टेशनों के कयाम के लिए मुनासिब जमीन की निशानदेही करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में कल एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइवर योजना PM ई ड्राइवर उत्तर प्रदेश में साफ सब्ज और पायदार नकलो हमल के निजाम को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम पहल है। उन्होंने रियासत में जदीद पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से तैयार करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को सहूलत फराहम करने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 के दफात में तरमीम की है। नजरसानी शुदा SOP के मुताबिक होम स्टे इस्टेब्लिशमेंट अब कम अज कम एक और ज्यादा से ज्यादा 8 कमरों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 से ज्यादा कमरों वाले यूनिट इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन के अहल नहीं होंगे। रियासती सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि 16 बिस्तरों वाले हॉस्टल को भी जुमरे के तहत अहल समझा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पोर्टल पर खत्म होने की तारीख से 3 माह कबल अज खुद तजदीद की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने कल सब इंस्पेक्टर और उसके मसावी ओहदों के लिए 2025 के बराह रास्त भर्ती के लिए हतमी इंतखाबी नतायज का ऐलान किया। मुंतखब उम्मीदवारों के फहरिस्त रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ के उर्दू AIS स्टडी सेंटर में सिविल सर्विसेज के मुफ्त कोचिंग के लिए दरखास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीखों में तौसी कर दी गई। ऑनलाइन फॉर्म 27 जुलाई 2026 तक भरे जा सकते हैं। इससे कबल आखिरी तारीख 14 जुलाई को खत्म हो गई थी। इसके साथ ही दाखिला इम्तिहान की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया गया जो अब 2 अगस्त 2026 को होगा। इम्तिहान के बाद मुंतखब होने वाले तलबा और तालबात को मुफ्त कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल में रहने और खाने की सहूलत भी बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। तफसीली मालूमात और ऑनलाइन दरखास्त के लिए तलबा एकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह इतला एकेडमी के डायरेक्टर अनिमेश मिश्र और सेक्रेटरी शौकत अली की जानिब से जारी की गई। रियासत में आइंदा कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेजी से मुकम्मल की जा रही है। अमरोहों में कांवड़ यात्रा के महफूज पुरमन और मुनज्जम तरीके से तकमील को यकीनी बनाने के लिए जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। पूरी कांवड़ यात्रा की CCTV कैमरों ड्रोन से निगरानी की जाएगी और 900 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का

0: उपलब्ध और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: सखियों के साथ,
5: सखियों के बाद,
4: सखियों के जज्बात,
6: गृह लक्ष्मी।
7: श्रोता बहनों को मेरा यानी कि इला का प्यार भरा नमस्कार, और हमारी रेडियो सखी पूजा तुम्हें भी नमस्कार।
8: इला जी, आपको और मेरी प्यारी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
7: पूजा, आज का समय देखो कितना ज्यादा बदलाव का समय है। मतलब पहले के समय में, यानी कि जब हम लोग कभी अपनी दादी नानी के फोटो एल्बम को देखते हैं ना, तो लगता है कि अरे कितना ज्यादा बदल गया है। पहले की जो फोटो दिखती थी उसमें कम से कम एक फोटो में 20-25 लोग खड़े रहते थे, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका रहन सहन सब बदलता था। और अभी के फोटो में जो समय आ गया ना, वो सेल्फी का आ गया है।
8: और आजकल लोग ग्रुप फोटो के साथ, यानी अपने परिवार के साथ फोटो खिंचाने के बजाय सेल्फी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि तो समय तो बदल गया है, साथ साथ रिश्तों का जो तोलमोल है वो भी इलाजी बदल चुका
7: बिल्कुल।
8: है। और देखे ना, पहले परिवारों में सब मिलके रहते थे, पूरा परिवार, चाचा चाची, दादा दादी, मतलब एक लगता था ना कि रिश्तों में एक अपना जुड़ाव है, जहां हम छोटी सी छोटी चीजें भी, अगर गलतियां हो जाती थी तो हमें माफ कर दी जाती थी। अब क्या है कि रिश्तों की जो मर्यादा है, या कह सकते हैं, वो बदल चुका है। अब रिश्तों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी
7: हो गई। देखो पूजा, यहाँ पर हम ये कहेंगे ना कि हालात बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पहले क्या होता था कि ज्यादातर लोग अपना रोजगार करते थे या फिर खेती पर रहते थे, तो ऐसे में परिवार एक साथ रहता था। अभी क्या समय हो गया है, लोग नौकरी पेशा हो गए हैं, और नौकरी के लिए एक ही जगह पर रह के जो किया नहीं जा सकता, उसके लिए दूर देश में, दूसरे शहर में जाना ही जाना है। तो जो जहां जा रहा है फिर वो वहीं बस जा रहा है, और उस समय सारे और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ रह जाते हैं पति पत्नी और उनके बच्चे। तो ये भी हो रहा है कि परिवार जो हम लोगों का है वो बहुत मॉडर्न होता जा रहा है। और मॉडर्निटी तो ठीक है कि सोच में, विचार में बदलाव आया है, हम थोड़े आधुनिक हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा है तो कुछ न कुछ थोड़े से नुकसान भी है।
8: नुकसान ये कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से घर से दूर होने के कारण मिल नहीं पाते हैं, उनसे बैठ के बातें नहीं कर पाते हैं, पुरानी यादें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो कमियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन इलाजी घर में काम करने के लिए, कमाने के लिए हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना भी तो जरूरी है।
7: बिल्कुल सही बात है बहनों। हम ये भी कहेंगे कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मशीनें कितनी भी एडवांस हो जाएं, वे इंसानी जज्बातों को और का कोई विकल्प नहीं है। उनके अंदर जज्बात नहीं होते हैं, जज्बात चाहिए, अपनापन चाहिए, तो अपने रिश्ते चाहिए, आपके लोग चाहिए। तो कोशिश कीजिए बहनों कि आप कहीं दूर है, लेकिन आप लोग एक समय ऐसा निकालिए कि अपने लोगों से मिलिए। नहीं मिल सकते हैं तो फोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से व्यवहार बना करके रखिए, ताकि जो आपका अपनापन है ना, वो संवेदना है, वो हमेशा जीवित रहे।
8: और लीला जी कहते हैं ना, रिश्तों का जुड़ाव जो होता है वो दिल से होता है। और ये भी कहा गया कि अगर आप मन से, दिल से किसी भी काम को करिए तो अच्छा होता है। वैसे ही हमारे आपसी संबंध भी होते हैं, अगर हम उसे दिल से निभाएं तो हमेशा अच्छे ही बने रहते हैं। और वैसे भी आज के समय में हमारे मन के कोने में वही प्यार और दुलार बनाए रखना है अपने लोगों के लिए। भले हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारा जो मन है ना, एकदम बच्चों जैसा, उनके लिए वैसे पहले जैसा ही होना चाहिए।
7: बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, जब हम अपने मन को, अपने अंदर की भावनाओं को हम एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं, अपनापन बना करके रखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है। और वैसे पूजा, अभी की अगर हम बात करें ना, तो अभी भी जो बाहर का समा है ना, बड़ा सुहावना सा है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बद्री आ रही है, जा रही है। हम तो भाई अपनी बद्री रानी से यही कहेंगे कि थोड़ा सा बरस जाओ
8: और थोड़ा गर्मी कम हो जाए।

0: पूजा, सुहाना सा जब मौसम हो जाता है
1: हाँ
0: तो मन तो एकदम बहुत खुश हो जाता है,
1: हाँ वो तो
0: और जब
1: है।
0: मन खुश होता है ना तो बहुत सारी जैसे रोमांचक बातें होने लगती हैं। कभी मन करता है कि भाई कुछ नया किया जाए, कभी मन करता है कि भाई चाय पकौड़े खाया जाए,
1: और कहीं
0: और
1: कभी
0: कभी मन करता है कि कुछ कविता कहानी सुना जाए, गीत गुनगुनाया जाए, है ना। तो जो हमारी कवित्रियाँ लोग होती हैं उनके लिए बारिश का मौसम बहुत खास होता है। भाई बारिश की बूंदें धरती पर पड़ी नहीं कि वो लोग बैठ जाती हैं पूरा बारिश के मौसम का अच्छे से वर्णन करने के लिए। तो बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष काव्य पाठ, और इस काव्य पाठ की खूबी है कि इसमें जेठ से लेके आषाढ़ सावन तीनों जो बारे जो मौसम है ना उसके बारे में कविताएं हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो बहनों आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: डॉक्टर शशि बाला सिंह जी से।
0: तो बहनों आइए सुनते हैं काव्य पाठ।
2: आज हम आपको मौसम के बदलते तेवर अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। प्रकृति के रूप पल पल परिवर्तित हो रहे हैं। पहले भीषण गर्मी और उमस, फिर बारिश। तो सबसे पहले प्रस्तुत है नवगीत, शीर्षक है बादल तरसे प्यास।

और अब कुछ दोहे जिनमें अलग अलग रस रंग राग कुछ भक्त से भरे।

तो काशी है, और यहाँ हमेशा शिव जी का विचरण और उनके गणों का उत्पात तो होता ही रहता है। भूत पिशाचों ने किया उत्सव में हुड़दंग, रथ यात्रा आने ही वाली है, मेला लगने ही वाला है। भूत पिशाचों

और अब आषाढ़ आ गया तो रिमझिम भी शुरू हो ही गई। तो कुछ एक दृश्य चित्र बारिश का, गौर करें। कल रात मेरी छत पे टहलती रही बारिश, कल रात मेरी छत पे टहलती रही बारिश।

0: उम्मीद है कि बारिश जल्द ही आपके हाथों को हाथ मिलाकर जरूर चलेगी।
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ डॉक्टर शशि बाला सिंह से।
2: पूजा,
1: हाँ
2: बदलता मौसम हमें बहुत कुछ सिखाता
1: हाँ
2: है,
1: ये तो
2: लेकिन
1: है।
2: अगर हमारे अंदर यानी हमारा अगर इम्यून पावर अगर अच्छा है तो शायद मौसम की मार हमारा शरीर बहुत अच्छे से झेल जाता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन इसके लिए हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सिर्फ डॉक्टर या दवाइयों का ही सहारा लें। हम घरेलू बहुत से ऐसे पेय पदार्थ हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ हर्बल ड्रिंक्स हैं, अगर चाहें तो बहनों, जैसे अभी बरसात भी शुरू होने वाली है ना, तो अजवाइन है, लौंग है, काली मिर्च, तुलसी, इसका काढ़ा कभी कभी आप सेवन कर सकती हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 3 से 4 बार भी अगर आप लेती हैं तो ये अंदर से शरीर को मजबूत बनाता है।
1: और इसके साथ साथ अभी तो इस मौसम में इलायची आंवला मिलना मुश्किल है, लेकिन आप अगर आपके पास आंवले का जूस है तो उसका भी सेवन कर सकती हैं। साथ ही अदरक, अदरक को उबाल के उसका काढ़ा बना ले, या सूप की तरह या ऐसे ड्रिंक की तरह भी आप पी सकती हैं। ये हर्बल काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है और
2: और
1: बरसात
2: बहन हाँ बहनों, और इसके साथ ही साथ घर में आपके पास में हल्दी रहती है, हल्दी बहुत गुणकारी होती है। हल्दी और दालचीनी को अगर हम गर्म पानी में गर्म कर लेते हैं और उसकी एक हर्बल चाय पीते हैं तो भी हमारे जो इम्यून पावर है इसको ये गजब का बूस्ट करता है।

0: और इसके साथ ही साथ ये हमारे वात कफ को भी बैलेंस करता है।
1: और इसके साथ ही साथ में बहनों एक और काढ़ा है, जैसे कि करी पत्ता और रोजमेरी, अगर आप चाहें तो घर में इसका पौधा लगा सकती हैं। उसकी ताजी पत्तियों को आप खूब उबाल लीजिए और उसमें आधी चम्मच शहद या फिर चीनी डाल करके आप उसको पीजिए, तो इम्यून पावर तो बढ़ाता ही है, त्वचा में चमक लाता है, और करी पत्ता का जो फायदा है वो हमारे बालों की सेहत को बहुत अच्छा अच्छा करता है। तो बहनों आप भी इस तरीके के काढ़ों का इस्तेमाल कीजिए, और जो मौसम बदल रहा है उसके लिए भी आप एकदम तैयार रहिए, क्योंकि जो बरसात का मौसम है ना वो नमी वाला होता है, ऐसे में बहुत सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है।
0: हाँ।
1: तो संक्रमण से बचने के लिए आप अपने को अपने घर को सूखा जरूर रखिए।
0: और बारिश के मौसम में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गीले जगह पे न रहें, और जब भी बारिश हो, बाद जब भीगे हों तो तुरंत आके नहाना, मतलब फिर से बार बार नहाना ना करें, इन सब चीज़ों से बचें। और इस समय स्किन एलर्जी जो होती है, एलर्जी बहुत तेज़ी से होती है, लाल लाल जो दाने हो जाते
1: हाँ
0: हैं, रैशेस हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें जो जैसे अभी आपने बताया वो काढ़ा भी है, साथ ही कुछ डॉक्टर से सलाह के अनुसार भी कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं ताकि बारिश के मौसम में हम इन सब चीज़ों से बचे रहें।
1: बिल्कुल। और बहनों आप एक घरेलू टिप्स है जो कि मैं भी करती हूँ और मैं बचपन से हमारे यहाँ होता आया है, नारियल के तेल में आप थोड़ा सा कपूर मिला के रख लीजिए, तो अगर आप बारिश में भीग गई हैं तो हाथ पैरों को अच्छी तरह सुखाने के बाद, और कोशिश कीजिए कि घर थोड़ा हवादार ऐसे टाइम बने रहे क्योंकि धूप तो मिलता नहीं है, तो हाथ पैरों में इस तेल को जरूर लगाइए, तो पैरों की सड़न को भी रोकता है और बैक्टीरिया को फैलने से भी रोकता है।
0: हाँ, और इसके साथ ही साथ अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखें, बारिश के मौसम में कोशिश करें कि ज़्यादा तला भुना चीज़ खाने से बचें।
1: बासी खाने से बचें। और पूजा देखो भाई घड़ी इशारा कर रही है, तो बहनों अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, अगली बार फिर हम लोग आएंगे कुछ नई बातें नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था, मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTS DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर। दिन के 1:45 हुए हैं, अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये पूर्वी।

इस पूर्वी के बाद अब आइए सुनते हैं निर्गुण कलाकार गुलाब चंद विश्वकर्मा और उनके साथी।

0: Rated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of Northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. Furthermore, heatwave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak river has crossed the danger mark by 2 centimeters. More from our correspondent.
1: As the water level of the Gandak River continues to rise, 183,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 221,000 cubic. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stomped into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य

0: जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपए से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, स्वच्छ निष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को

0: सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह

0: रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे शिवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने।

0: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, गंगा की लहरों की ठहराव और विश्वनाथ धाम की पवित्रताओं के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो कुछ बातें कुछ गीत में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा। दोस्तों, आज तारीख है 15 जुलाई यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे समाज की तस्वीर आती है जिसमें असीमित ऊर्जा है, अनंत सपने हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है वो है हुनर यानी स्किल। कहते हैं कि शिक्षा आपको ज्ञान देती है, लेकिन हुनर आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आज हमारा ये कार्यक्रम इसी विषय पर समर्पित है कि कैसे हम अपने नए पीढ़ी को सही दिशा और सहारा दे सकें। आइए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुनहरे गीत से जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर रास्ते पर हर मुश्किल से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। फिल्म इम्तिहान से सुनिए किशोर कुमार जी की आवाज में ये बेहतरीन गीत।

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कितनी गहरी बात कही है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। दोस्तों, आज के इस आधुनिक दौर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या सिर्फ एक डिग्री हासिल कर लेना ही सफलता की गारंटी है? आज के समय में इंडस्ट्री और मार्केट बदल रहा है। आज परीक्षा में मिले अंकों से ज्यादा इस बात की कीमत है कि आपको क्या काम प्रैक्टिकल रूप से आता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। टेक्निकल स्किल्स जैसे डेटा साइंस या मैकेनिकल वर्क से लेकर हमारे बनारस के पारंपरिक हुनर जैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट तक हर चीजों को प्रोफेशनल रूप से सिखाया जा रहा है। हमें समझना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।

जरूरी ये है कि आप उस काम के कितने बड़े उस्ताद हैं। चलिए, अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमें याद दिलाता है कि मेहनत और सच्ची लगन से ही इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। फिल्म नया दौर से एक सुनहरा गीत।

अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये गीत सिर्फ एक गीत ही नहीं बल्कि एक विश्वास है कि जब युवा शक्ति एक साथ मिलती है तो असंभव को भी संभव बना देती है। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। बात जब हुनर की हो रही हो तो हम बनारस के उस ऐतिहासिक जोश को कैसे भूल सकते हैं जो सदियों से हमारी साड़ी वीविंग, गुलाबी मीनाकारी और वुडन क्राफ्ट में दिखता आया है। लेकिन आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर हमें एक नए नजरिए से सोचना होगा। आज के युवाओं को अपने इस पारंपरिक हुनर को मॉडर्न डिजिटल स्किल के साथ जोड़ना होगा। अगर हमारा कोई युवा कलाकार डिजिटल परफॉर्मेंस, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखकर अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबल बनाता है तो वही असली प्रगति है। आज इंटरनेट पर कई माध्यम हैं जहां से घर बैठे नए जमाने के स्किल्स मुफ्त में सीखे जा सकते हैं। जमाना बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। इसी सोच के साथ आइए सुनते हैं कोशिश और उम्मीद से भरा एक और खूबसूरत और अमर गीत।

नदियाँ चले चले रे धारा, चलती हुई धारा ही जिंदगी की असली पहचान है। दोस्तों, कार्यक्रम के इस पड़ाव में मैं अपने सभी युवा श्रोताओं से और उनके माता पिता से एक बात कहना चाहूंगी। कई बार जब हमें नौकरी नहीं मिलती या हम किसी मुकाबले में पीछे छूट जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, शिक्षा का मकसद सिर्फ किसी के यहाँ नौकरी पाना नहीं बल्कि खुद को इस काबिल बनाना है कि आप खुद का और चार और लोगों का सहारा बन सकें। अपने अंदर के उस एक हुनर को पहचानिए, उसे तराशिए। जब आपके हाथ में कोई हुनर होता है ना, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद लौट आता है। आइए इस सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं इस बेहद प्रेरक गीत के साथ, जो हमें सिखाता है कि रास्ते में चाहे कितने भी अंधेरे हों, मेहनत का एक दिया सब बदल सकता है।

इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने की जिम्मेदारी आज हमारे देश के युवाओं के ही कंधों पर है और इसका रास्ता हमारे कोशिशों और हमारे हुनर से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत में वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की ये बातें हमारे युवा दोस्तों के दिलों में एक नई उम्मीद और कुछ नया सीखने की एक नई चाह जगाएंगी।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कॉम्पेयर प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल निखिल पाल की आवाज़ में फिल्म बर्फी का गीत। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म सिंह इज किंग से। इस गीत को लिखा है मयूर पुरी ने और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म कलयुग से। आवाज राहत फतेह अली खां की है, गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार अनु मलिक।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रोग्राम युवा वाणी।

0: उसके लिए सिर्फ इम्तिहान है, हिम्मत ही असली पहचान है। जो गिरकर फिर संभल जाता है, वही मंजिल तक पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में, जहां मैं आपकी रेडियो साथी मोनी
1: और मैं शालिनी
0: करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, देंगे आपको कुछ रोचक जानकारियां, साथ ही साथ आज आपको एक विशेष वार्ता भी सुनवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
4: ओ 05

0: 5 4 2 2 2 7 6 5 8।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0 5 4 2 2 2 7 6 5 8।
2: दोस्तों, आज 15 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बदलती तकनीक के अनुरूप आवश्यक कौशल प्रदान करने के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में इस दिवस की घोषणा की थी और इसे पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया।
3: आज के समय में केवल शैक्षणिक डिग्री ही नहीं पर्याप्त है, बल्कि तकनीकी ज्ञान, डिजिटल साक्षरता, संचार कौशल, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता भी सफलता की कुंजी बन चुकी है। कौशल विकास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है।
2: बिल्कुल, भारत में भी स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और विभिन्न व्यावसायिक परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य देश के युवाओं को सक्षम बनाकर राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
3: विश्व युवा कौशल दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि युवा अपने कौशल को निरंतर विकसित करते रहे, नई तकनीकों को सीखे और स्वयं को समय के साथ अपडेट रखे, तो वे न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
2: बिल्कुल, आइए इस अवसर पर हम सभी युवाओं को नए कौशल सीखने, अपनी प्रतिभा को निखारने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने के लिए प्रेरित करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनेता और जनसेवा के प्रतीक भारत रत्न कुमार स्वामी कामराज, जिन्हें के कामराज के नाम से भी जाना जाता है, की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।
3: के कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन अपने परिश्रम, ईमानदारी और सेवा भाव के बल पर भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल भी गए।
2: बिल्कुल, स्वतंत्र भारत में के कामराज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में हजारों नए विद्यालय खोले गए, जिसमें गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का अवसर मिला। विद्यालयों में मिड डे मील योजना को बढ़ावा देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनके प्रयासों से शिक्षा का प्रसार हुआ और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी भी आई।
3: के कामराज अपनी सादगी, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के लिए पूरे देश में सम्मानित थे। उन्होंने सत्ता को कभी व्यक्तिगत लाभ का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे जन सेवा का साधन माना। भारतीय राजनीति में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि उन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: बिल्कुल, के कामराज का जीवन हमें सादगी, समर्पण, ईमानदारी और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर आइए हम उनके आदर्शों को अपनाने और राष्ट्र निर्माण में अपना सकारात्मक

0: महाराज अपनी सादगी, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के लिए पूरे देश में सम्मानित थे। उन्होंने सत्ता को कभी व्यक्तिगत लाभ का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे जन सेवा का साधन माना। भारतीय राजनीति में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि उन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल, के कामराज का जीवन हमें सादगी, समर्पण, ईमानदारी और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर आइए हम उनके आदर्शों को अपनाने और राष्ट्र निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान देने का संकल्प ले। फिलहाल दोस्तों, वक्त हो चला है एक गीत का।

0: इसी के साथ दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष वार्ता, जिसका विषय है भविष्य के रोजगार और युवाओं के लिए आवश्यक कौशल, जिसके वार्ताकार हैं आशीष कुमार झा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, आज 15 जुलाई है, विश्व युवा कौशल दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इस दिन को मनाने का फैसला लिया था ताकि युवाओं को रोजगार का और स्वरोजगार के लिए जरूरी कौशल हासिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस साल की वैश्विक थीम है स्किल फॉर शेयर्ड फ्यूचर, यानी एक साझा भविष्य के लिए कौशल। साझा भविष्य, यह शब्द जरा रुक कर सोचने लायक है, क्योंकि आज जब भी बात होती है एआई की, रोजगार की, भविष्य की, तो अक्सर यह अकेले व्यक्ति की लड़ाई की तरह पेश की जाती है। जैसे हर युवा को अकेले ही अपने लिए रास्ता खोजना है, अकेले ही मुकाबला करना है। लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा अलग नजरिए से बात करना चाहता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यह चुनौती व्यक्तिगत है, उतनी ही सामूहिक भी, और इसका हल भी अकेले नहीं, साथ मिलकर ही निकलेगा। हमारे यहाँ एक प्राचीन श्लोक है जो शायद इस पूरी बात को सबसे सुंदर तरीके से कहता है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। यह ऐतरेय ब्राह्मण का एक प्रसिद्ध वचन है, जिसका सार है जो चलता रहता है उसी का भाग्य भी चलता है, जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। सीखना भी बिल्कुल ऐसा ही है, यह एक बार की मंजिल नहीं, सतत यात्रा है। मैं खुद पिछले कुछ वर्षों से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक स्टार्टअप फाउंडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ किसी योजना या किसी संस्था की तारीफ करने नहीं आया, मैं सिर्फ आंकड़ों, कुछ अनुभवों और थोड़े इतिहास के सहारे यह समझाने की कोशिश करूंगा कि रोजगार की दुनिया में यह बदलाव पहले भी कैसे आया, आज कहाँ खड़ा है और आगे किस दिशा में जा सकता है। सबसे जरूरी, हम इसका सामना अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं, इस बात पे सोचना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, तकनीक और कोई नौकरियां बदल गई, यह कहानी नई नहीं है। करीब 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति आई, मशीनों ने हाथ से किए जाने वाले काम छीने, बुनकरों और कारीगरों का बड़ा तबका प्रभावित हुआ। इस दौर में भी लोगों ने यह सोचा होगा कि अब उनका क्या होगा, लेकिन उस दौर में फैक्ट्री, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक जैसे बिल्कुल नए क्षेत्र भी खड़े हुए। फिर 20वीं सदी के अंत में कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर आया। जरा सोचिए, उस समय एक टाइपिस्ट, एक बैंक क्लर्क, एक टेलीफोन ऑपरेटर के लिए यह खबर कैसी रही होगी कि अब मशीन उनका काम कर देगी। यह डर वाजिब था, बहुत से पुराने काम वाकई बदल गए या खत्म हो गए। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कॉल सेंटर, एआई

आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स जैसे नए उद्योग खड़े हुए। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। 90 के दशकों में जिन शहरों को कोई खास तवज्जो नहीं मिलता था, जैसे कि बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, वह अगली 20 वर्षों में भारत की आईटी राजधानी बन गए। यह किसी एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, यह हजारों लाखों युवाओं की सामूहिक कहानी थी जिन्होंने साथ मिलकर एक नया उद्योग खड़ा किया। तो इतिहास एक साफ पैटर्न दिखाता है, हर बड़ी तकनीक छलांग कुछ पुराने काम खत्म करती है, लेकिन उससे ज्यादा नए काम भी बनाती है। दिक्कत उनके लिए होता है जो इस बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं, और मौका उनके लिए बनता है जो समय रहते और साथ मिलकर खुद को नई परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। एआई को भी हमें इसी ऐतिहासिक निरंतरता में देखना चाहिए, यह पहला बदलाव नहीं, उस सिलसिले की अगली कड़ी है। आज की तस्वीर में हम ये बात थोड़ा देखना चाहेंगे कि वर्तमान आज दुनिया भर में युवा बेरोजगारी का एक गंभीर मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आंकड़े के अनुसार वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 2023 में घटकर करीब 13% पे आई थी, जो कि पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। फिर भी दुनिया भर में करीब 27 करोड़ 30 लाख के आसपास युवा आज भी औपचारिक शिक्षा, रोजगार या कौशल प्रशिक्षण किसी से भी नहीं जुड़े हुए हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा चुनौती की कहानी है, और यह कहना ठीक होगा कि हमें मिलकर इसे संभालना होगा, आगे की प्रक्रिया देखना होगा। इस बीच AI तेजी से हर क्षेत्र में दाखिल हो रहा है। वैश्विक अनुमानों के मुताबिक 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से करीब करीब 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती है, लेकिन साथ ही करीब 17 करोड़ नई नौकरियां भी बन सकती है। यानी शुद्ध रूप से देखें तो नौकरियां घटने के बजाय बदल रही है और बढ़ रही है, मगर उनकी प्रकृति अलग होगी। जो काम दोहराव वाले और नियम आधारित है वो सबसे पहले प्रभावित होंगे। वही डेटा साइंस, AI मॉडल ट्रेनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन मैनेजमेंट जैसे मांग तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सही सवाल यह नहीं है कि क्या AI मेरी नौकरी छीन लेगा, सही सवाल यह है क्या मैं AI के साथ काम करना सीख रहा हूँ या उससे दूर भाग रहा हूँ। अब मैं थोड़ा आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि किसी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आम स्थिति जो शायद आप में से कई लोगों के लिए मिलती जुलती कहानी हो सकती है। जरा सोचिए, दो युवा हैं, दोनों एक ही छोटे से शहर में रहते हैं, दोनों की डिग्री भी एक जैसी है। एक युवा रोज सुबह उठकर यह सोचता है, मेरे शहर में तो बड़ी कंपनियां है नहीं है, मेरा क्या होगा। दूसरा युवा उसी सुबह मोबाइल पर 20-30 मिनट निकालकर एक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करता है, अपने दोस्तों के साथ छोटा सा स्टडी ग्रुप बनाता है, जहां हफ्ते में एक बार सब मिलकर अपने सीखे हुए चीजों पे चर्चा करते हैं। फर्क सिर्फ यह नहीं कि दूसरे युवा के पास ज्यादा साधन थे, फर्क यह है उसने इंतजार करने के बजाय शुरुआत करना चुना, और उसने यह अकेले नहीं साथियों के साथ मिलकर किया। यही वह फर्क है जो असल दुनिया में आंकड़ों में भी दिख रहा है। अगर हम आज की तस्वीर की बात करें तो भारत की स्थिति देखें तो कुछ स्वतंत्र सर्वेक्षण और औद्योगिक रिपोर्ट दिलचस्प तस्वीरें दिखाती है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 आपको ये बताता है कि उद्योग जगत की कई संस्थाओं के साझा सर्वेक्षण के आधार पर भारत की रोजगार योग्यता एम्प्लॉयबिलिटी दर बढ़कर 56.35% हो गई है, जो पिछले साल करीब 54.8% थी। इसका अर्थ यह भी है कि कंपनियां आने वाले वित्त वर्ष में भर्ती की मंशा भी बढ़ा रही है, और वो 29% से 40% करीब बढ़ जाएंगे। यह आंकड़े यह नहीं बताता है कि सब कुछ ठीक है, इसमें चेतावनी भी है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि AI और डेटा जैसे उन्नत कौशल अभी मुख्य रूप से महानगरों में बड़े संस्थानों तक ज्यादा सीमित है, और ग्रामीण व छोटे क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे, लागत, अनुभव की कमी जैसे बाधाओं का सामना कैसे किया जा सकता है। यानी अवसर बढ़ रहे हैं पर बराबरी से नहीं बढ़ रहे हैं। यह वह जगह है जहां अगला हिस्सा प्रासंगिक होने वाला है। अब बात करते हैं उस पहलू पे जो श्रोता वर्ग के लिए सबसे प्रासंगिक होगा, हमारे छोटे शहर और कस्बों के लिए कैसे AI और युवा अपने कौशल को के एक सही दिशा और मार्ग में जा सकते हैं। स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार पे आज AI सीखने में करीब हर पांचवा व्यक्ति Tier 2 शहरों से आ रहा है, जैसे लखनऊ, जयपुर, पटना, इंदौर, लाइक दैट। यह सिर्फ इंजीनियरिंग भूमिका और पृष्ठभूमि के लोग नहीं है, करीब 1/4 सीखने वाले लोग
गैर तकनीकी क्षेत्रों से भी।

0: हैं, जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, यहाँ तक कि शिक्षा और परामर्श जैसे पैसे से भी हैं। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि एआई कौशल सीखने के बाद औसतन वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और महिलाओं में यह बढ़ोतरी कई बार पुरुषों से भी ज्यादा रही है, खासकर गैर इंजीनियरिंग भूमिकाओं में। यानी तथ्य यह है कि अब एआई में कैरियर बनाने के लिए बेंगलोर या हैदराबाद में बैठना अनिवार्य शर्त नहीं रह गई है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अक्षर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अंग्रेजी में सहजता और सही मार्गदर्शन तक पहुंच, ये चुनौतियां आज भी छोटे शहरों में बड़ी है। कि यह समस्या किसी एक युवा की अकेली लड़ाई नहीं है, पूरे समुदाय की साझा चुनौती है, और इसका हल भी सामूहिक हो सकता है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर शांति मंत्र है जो शिक्षा और सीखने में पढ़ाया जाता है। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवा वहे, तेजस्विना धीमस्तु मा विदि शावहे। अर्थात हम दोनों साथ मिलकर रक्षा पाएं, साथ मिलकर भोजन करें, साथ मिलकर शक्ति अर्जित करें, हमारा सीखा हुआ ज्ञान तेजस्वी हो और हमारे बीच कभी वैर ना हो। यह मंत्र गुरु और शिष्यों के लिए कहा गया था, लेकिन यह आज के युवाओं के लिए भी उतना ही सटीक है। जब एक छोटे शहर के 10-20 युवा मिलकर एक साथ ऑनलाइन कोर्स करें, दूसरे सीखे हुए कौशल साझा करें, साथी द्वारा अंग्रेजी में मदद करें, तो बदलने में अपने कंप्यूटर का नॉलेज, यह एक सहवीर कारवा वहे वाली भावना है और यह असली जिंदगी में उतरती है। कई शहरों में आज अनौपचारिक लर्निंग सर्कल स्थानीय पुस्तकालय और कॉलेज परिसरों में भी बन रहे हैं, जहां सीमित साधन होने के बावजूद सामूहिक मेहनत से सीखने की गति तेज होती जाती है। यही असली मायने में स्किल फॉर शेयर्ड फ्यूचर है, जो कि इस युवा कौशल दिवस का थीम है। अब बात करते हैं थोड़ा भविष्य की, जिससे हम आगे कैसे देखने वाले हैं। यह मैं कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मौजूदा रुझानों के आधार पर एक संभावित दिशा साझा करना चाह रहा हूं। एक काम की प्रकृति और ज्यादा टास्क आधारित होती जाएगी, यानी एक अस्थायी पद की जगह प्रोजेक्ट, गिग वर्क और फ्रीलांसिंग हिस्सा बनेगा। अनुमान है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े श्रमिकों की संख्या 2030 तक कई करोड़ तक पहुंच सकती है। दो नियोक्ता अब डिग्री से ज्यादा प्रमाणित कौशल यानी स्किल बेस्ड हायरिंग की तरजीह देने लगेंगे। यानी आपने कहाँ पढ़ाई की है उससे ज्यादा मायने रखेगा कि आप क्या कर सकते हैं, यह दिखाना बहुत जरूरी होने वाला है। तीन, जो भूमिकाएं इंसानी निर्णय, नैतिकता, रचनात्मकता और आमने सामने के भरोसे पे टिकी है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परामर्श, नेतृत्व, उनके जल्दी खत्म होने की आशंका सबसे कम है, भले ही एआई उन्हें सहायक औजार की तरह शामिल हो सकता है। आप एआई को एक टूल की तरह हर अलग-अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है कि आज महानगर और छोटे शहर के बीच दिख रहा है, वह आने वाले वर्षों में या तो और चौड़ा हो सकता है या पाटा जा सकता है, मतलब खाई बड़ी होने वाली है। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि छोटे शहर के युवा आज कितनी सक्रियता से और कितनी एकजुटता से इस बदलाव में शामिल होते हैं। यह भविष्य पहले से तय नहीं है, इस बात से तय होगा कि हम आज क्या कदम उठाते हैं, और वो अकेले नहीं, साथ मिलकर उठाते हैं। युवा खुद को कैसे तैयार करें, इसके लिए मुख्य तीन बातों पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहली, एआई को औजार समझे, प्रतिद्वंदी नहीं। किसी भी बुनियादी एआई टूल का इस्तेमाल सीखना आज उतना ही जरूरी हो गया है जितना कंप्यूटर सीखना था। अपने क्षेत्रों में सोचें, पढ़ाई हो, खेती हो, दुकानदारी हो, बिजनेस हो, आप सभी एरिया में ये सोचें कि एआई की उत्पादकता का इस्तेमाल करके इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ईशानी कौशल मत छोड़ें, संवाद, टीम वर्क, समस्या समाधान, नैतिक निर्णय क्षमता, ये वो चीजें हैं जो मशीन नहीं कर सकती, और यह आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। छोटी शुरुआत करें और उससे आगे लेते जाएं। हमारे यहाँ हितोपदेश में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येण न मनोर्थः, अर्थात काम मेहनत से पूरे होते हैं, केवल सोचने या इच्छा करने से नहीं। तो मुफ्त और सस्ते ऑनलाइन कोर्स, स्थानीय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, छोटे प्रमाण पत्र, इनसे भी आप शुरुआत करें, बड़ी डिग्री उसके साथ प्रोसेस करें और छोटे छोटे कदमों से सीखते रहें।
1: दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वार्ता पसंद आई होगी और इससे आप कुछ अच्छी जानकारी भी मिली होगी।

0: इसी के साथ साथियों, अब बारी आ गई है हमारे शब्दों के पिटारों को खोलने की और जानने की क्या क्या है आज के नए शब्द। आज का हमारा हिंदी शब्द है परिसीमन, जिसका अर्थ होता है सीमा निर्धारित करना, मर्यादा तय करना या किसी क्षेत्र, अधिकार या विषय की सीमाओं का निर्धारण करना। और अगर आप इस शब्द का वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के परिसीमन पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
1: और इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है ऑब्सोलेट, जिसकी स्पेलिंग है OBSOLETE।

0: SOLETE, which means no longer in use, outdated because something newer or better has replaced it. और हिंदी में कहे तो अप्रचलित, पुराना, पड़ा चुका या प्रचलन से बाहर. And if you want to use this word in sentence, you can say that many old technologies have become obsolete due to rapid innovation. या फिर आप ये भी कह सकते हैं, this type of computer is now obsolete and rarely used. और इसी के साथ दोस्तों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, वह घड़ी आ गई है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की. लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि हमने आपसे कल क्या प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब देकर कौन विनर्स बने हैं. तो हमारा कल का सवाल था, हरगिल पक्षी प्रजाति मुख्यतः भारत के किन दो राज्यों में पाई गई, जिसका सही जवाब है असम और बिहार.
1: और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से. ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा. रिंग रोड, नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा. वहीं नेपा नगर, मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल सिवदे, शिवा, बसंतीबाई और गणेश सिवदे. संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामाबाई रायकवार.
0: मुकेश प्रजापति, सिगरा वाराणसी से रवि मौर्य, सिंगरौल आजमगढ़, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पिपरलोड, सहरगांव, छत्तीसगढ़. दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई. और हमारा आज का प्रश्न है आपसे कि हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता?
1: मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? और इसका सही जवाब आप हमारी इंस्टा आईडी youth.ar वाराणसी पर या फिर हमारी मेल आईडी youth.arvenus@gmail.com पर भेज सकते हैं. दोस्तों हमें समय समय पर कुछ जानने के लिए अपने इतिहास से रूबरू होना पड़ता है, तो आइए जानते हैं आज के हमारे इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास हुआ था आज ही के दिन. आज ही के दिन वर्ष 1795 में मसलिंस को अधिकारिक रूप से फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित किया गया था.
0: और इसी के साथ वर्ष 1999 में चीन द्वारा न्यूट्रॉन बम की क्षमता हासिल करने की स्वीकृति मिली. इसी के साथ वर्ष 1904 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में पहला बौद्ध मंदिर बना.
1: और दोस्तों वर्ष 1910 में एमिल क्रेपलिन ने एलायंस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम रखा था.
0: 1961 में स्पेन ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समाज अधिकारों को स्वीकार किया.
1: और इसी के साथ दोस्तों अब बारी है अगले सेगमेंट, जिसका श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है. हम बात कर रहे हैं आज की रोजगार सूचना की.
0: बिल्कुल सही कहा तुमने. उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC के कुल 500 पदों के लिए आवेदन जारी की जा चुकी है. इसके आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी ग्रेजुएट पास होना चाहिए.
1: और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 सुनिश्चित की है. और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic पर भी विजिट कर सकते हैं. फिलहाल वक्त है इस गीत का.

0: दोस्तों, जाते जाते हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर युवा के लिए जीवन में सफलता की नींव रखता है, जो है व्यक्तित्व का विकास। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्यक्तित्व का विकास का मतलब केवल अच्छा पहनावा या आकर्षक चेहरा है, लेकिन वास्तव में व्यक्तित्व विकास हमारी सोच, हमारा व्यवहार, बोलने का तरीका, आत्मविश्वास, समय का सम्मान, अनुशासन और दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है।
1: एक अच्छा व्यक्ति हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, का इंटरव्यू हो, प्रतियोगिता परीक्षाएं हो या सामाजिक जीवन। आत्मविश्वास और सकारात्मक व्यवहार हमारी सफलता को और भी आसान बना देता है।
0: व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। तो दोस्तों, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है।
1: दूसरी महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक सोच। जीवन में चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखना है एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान है। और इसी के साथ दोस्तों, तीसरी बात, अच्छा संवाद कौशल। जो अपनी बात स्पष्ट, विनम्र और आत्मविश्वास के साथ कहने की आदत डालता है, जितना अच्छा बोलता है उतना ही ध्यान से सुनना भी आवश्यक है।
0: समय का सही उपयोग, नियमित अध्ययन, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, समाचारों से जुड़े रहना, नई नई बातें सीखना, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: इसी के साथ दोस्तों, आज आपके साथ ही आपकी रेडियो साथी मोनी
0: और मैं शालिनी,
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युवमाड़ी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भइल कैबिनेट बैठक में वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे 6 लेन आ 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के बनौले के मंजूरी दिल गई हो। एगो और महत्वपूर्ण फैसला में कैबिनेट वाराणसी में गंगा नदी के साथे साथे 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोरों के मंजूरी दिलस।
1: काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का। हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा गंगा जी के साथ चलने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: कैबिनेट बैठक में कई गो और यो महत्वपूर्ण फैसलों लेहल गई। एगो रिपोर्ट।
2: कैबिनेट ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि आज उसे लागू भइल व्यापक आर्थिक आ व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन के साझेदारी में एगो खास क्षण हो। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एगो सोशल मीडिया पोस्ट के साझा करत प्रधानमंत्री कहले कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक आ व्यापार समझौता किसानन उद्यमियन आ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमन के नया गति दे। विश्व युवा कौशल दिवस के मौका पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में रोजगार आ उद्यमिता से आत्मनिर्भर बनल नौजवानन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सम्मानित कैलन। इस मौका पर केंद्र सरकार के 12 साल में प्रदेश में भइल कार्यन आ उपलब्धियन पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन कैल गेल। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहले कि पछिला 9 साल में डबल इंजन का सरकार प्रदेश के भीतर 9 लाख से बेसी नौजवानन के सरकारी नौकरी दिले हवे।
3: कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं, हर नौजवान की मेरिट नौकरी, ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, जो यूपी को कभी पहचान दिलाता था।
0: आज पूरा देश में स्किल इंडिया मिशन का 11वां सालगिरह मनावल जा रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2015 में यह मिशन का शुरुआत कैले रहना है।
4: इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1.65 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भी पंच सम्मेलन का आयोजन हुई। एगो रिपोर्ट।
5: सम्मेलन

0: में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के जरिए VBG रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों और उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की समझ को भी मजबूत किया जाएगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: रायबरेली जिला के बछरावां थाना क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज राह पर खैरहनी के लगे आज भी नहीं भईल एगो सड़क दुर्घटना में 3 जने के मौत हो गईल, वहीं 2 जने और योगा ही हम है। ये दुर्घटना वो समय भईल जब लखनऊ से प्रयागराज के ओर जा रहल एगो कार बेकाबू होके पुलिया से लड़ गईल। समाचार पूरा भईल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

आज रात 8:15 पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आंवले की बागवानी विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सुनिएगा गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथियों का गाया लोकगीत। शाम 7:00 अंग्रेजी कार्यक्रम में परीक्षा मलुक की वार्ता का प्रसारण होगा, विषय होगा यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट। 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे उषा टंडन और राहत अली। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। कानून और हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:00 घरेलू हिंसा विषय पर निधि श्रीवास्तव और अर्चना जायसवाल की परिचर्चा का प्रसारण होगा, संचालक होंगी सुरेखा सिंह। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं निखिल दास का बांसुरी वादन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर, 7:31 पर रसरंग और रात 8:30 पर रसमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, कल यानी 16 जुलाई सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स और रात 8:00 भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में करेला की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बच्चों में समसामयिक बीमारियां विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रीतम कुमार। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर सुनेगा विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन, और दिन में 12:45 पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे हनुमान प्रसाद, और रात 8:00 आप सुन सकते हैं सलमा आगा की गाय गजलें। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम अंगनैया में अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनिएगा गीत संगीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में मूंगफली की उचित उन्नत उत्पादन तकनीक

0: विषय पर डॉक्टर प्रतीक सनोडिया और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा सतीश चंद्र यादव और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में फिल्म वो लम्हे का गीत। इसके पहले आपने सुना फिल्म क्योंकि का गीत, जिसे गाया था कुणाल गांजेवाला। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र।

0: होंगी कि आयुर्वेद का वो विश्व आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन अद्य उत्तर प्रदेशस्य एकोनविंशति राष्ट्रिय राजमार्गात् वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः मध्ये षट्चत्वारिंशत् किलोमीटर मितं यावत् व्याप्तं षड्मार्गीय ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर इतीदं हाइब्रिड एनयूटी मॉडल इत्यस्मिन् अनुमोदितम्। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 14,500 कोटि रूप्यकात्मकः वर्तते।

0: पंचू राम राम सुमारू भैया।
1: हाँ सत्तू भैया।
0: अरे कहा हो कुल अपन खेती किसानी का हाल चाल।
1: ये भैया खेती किसानी के बहुत बढ़िया। देखा धीरे धीरे बीया भी तैयार कुछ हो गए, जहाँ बीया तैयार हो गए धान की रोपाई भी कह दे रही। लेकिन कुछ जगह देखा अभी हमारा ढैंचा सनई थोड़ा सा बड़ा ना रहल, तभी छोड़ रहा दो चार 10 दिनों के ट्रैक्टर से जुतवा दे।
0: अब मोटो अनाज के खेती कहत रहला पहलवा की कही
1: भैया देखा
0: है।
1: मोटा अनाज कहला तो देखा हम हमेशा अरहर के साथ बजड़ा लगाईला ई जानला कल कल के श्री अन्न है। दूसर बात ज्वार के भी खेती कई ले थोड़ा सा
0: अरे वाह,
1: है, और थोड़ा सा सावा भी छीट दे रही हो।
0: मने कि खाए का अपन पूरा व्यवस्था मोटा अनाज वाला घरे से कर लेते हो भैया,
1: एकदम एकदम
0: बाजार
1: भैया।
0: पर ना निर्भर हो।
1: ये भैया सुना हमार किसान में नहीं है जा, गृहस्थी में इतना पैसा नहीं है जो ना धरती मैया हमें दे देनी, वही से बाल बच्चन गुजारा कर ले जावन है कि नहीं।
0: सुमारू भैया ये जान ल कि हमने की लगे जौन अपन खेती है, हम कहते हैं कि उसमें हर प्रकार का अनाज ना बोवल जाए, तो भाई बाजार बाजार से कितना ढोवल जाए घरे तो
1: आ
0: भैया।
1: कितना मुंह देखा ली बाजार का
0: हाँ कितना मुंह देखा ली, और सबसे बड़ी बात है कि भैया दाम लगा था ना,
1: दाम
0: तो भाई
1: लगा
0: वो मत अपन जाता तो कम से कम थोड़ा बहुत अपन मेहनत कर लिया जाए, तो देखो कुछ दिन के खाए बदे मोटा अनाज या हर प्रकार का अनाज जौन की जौन समझ के पौष्टिकता मिलत है ओके भाई
1: हम
0: उगा लिया
1: सत्तू
0: जाए।
1: भैया बुझाते जानला हमेशा तार ध्यान रहला स्वास्थ्य पर, अपने अपने बाल बच्चन के, अपने घरैतिन के, अपने चौवन पशुअन के। सही सोच ही आप कह कहे से कि पे मोटा अनाज भी देखा आज वैज्ञानिक लोग भी कह दे हो कि उम्र रेशा होला है फाइबर रही, तो उसी का हो कि भाई स्वस्थ रही शरीर। अच्छा इतना ना विज्ञानी लोग यो कहो कि स्वस्थ शरीर बदे कई ठे संतुलित भोजन ले हुई आपके।
0: सुमारू भैया ये जान लेना कि दिन पर दिन जितना कह जाओ कि अपने खुराकी में, कहे के खुराकी से हमार मतलब ये है कि देखो तरह तरह के भाई भोजन खाए के मिलत था, ओके हमनी को रोक ना सके नहीं जाए। रोके का मतलब ये है हम कहे का कि भाई गैला बाजारी में चार तरीका का देखत था सामान आए खाए वाला,
1: अमल ललच
0: हाँ मन ललच
1: जाता
0: जाता, मन भाई नहीं माना था, फिर घरे में लड़का बच्चा लोग हुआ हाँ और भी परिवार सब है, तो भाई देखा सब कह जाओ ना कि सब तो कंट्रोल ना कर पाई
1: नहीं नहीं भाई
0: हाँ,
1: नहीं
0: सब
1: सही
0: तो रोक
1: बता।
0: अपनी मन के पाई
1: अरे
0: नहीं।
1: लड़का बहुत जल्दी बंगई करा ना कि हम देखा
0: हाँ
1: वहां खाब।
0: अब भाई
1: हाँ
0: मने हक कितनों उन्होंने के मना करबा, लेकिन एगो कह जाना ना कि अपन दिल और एगो मुंह जो ना अपन बच्चा लोगन के होला, तो भाई कहीं ना कहीं उनकी ओर खींच देला। लेकिन ये जान लेना कि ओके हमने के देखभाल करे के हुई, ओके संतुलित हमने के करे के हुई,
1: एकदम सही कहला
0: ये वो
1: भैया।
0: चाहे अपनी माध्यम से, चाहे डॉक्टर की बतैला की माध्यम से, चाहे पढ़ के जानकारी करके कि भाई ओके अपनी खुराकी में संतुलित करे के हुई, वो चाहे कौन आहार रखो।
1: भाई देखा सबसे बड़ी आहार तो हमारे क्या देखा दूध है, विज्ञानी लोग भी कहना कि दूध एक संपूर्ण आहार है, काहे से कौन सारा तत्व पावल जाला।
0: बिल्कुल।
1: और दूसर बात जब संतुलित की बात करते हुआ तो जेका अपने भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा डॉक्टर भैया लोग बताओ ना
0: एकदम खनिज पदार्थ जितना है।
1: विटामिन मिनरल्स शुद्ध पानी ये सब भैया हमन के आवाला, एकर महत्व बड़ी जिंदगानी के लिए बहुत जरूरी है।
0: सुमारू भैया ये जान ल कि देखो ये जुगन जुगन से चलत आई ल, हमनी
1: हाँ
0: का जब छोट रहनी जाना तो देखो कह घरे के लोग कहा कि भाई उतना अपनी खेती में अनाज ना उग पावे, उतना घरे में सामान ना रहे
1: सही
0: कि
1: बात है
0: लोग
1: भैया।
0: समय से भरपेट खा
1: हाँ
0: पावा।
1: हाँ एकदम
0: हाँ सुबेरे सुबेरे खा तो दून भर दोपहरिया ऐसे ही इधर उधर थोड़ा पानी थोड़ा रस
1: हाँ थोड़ा गुड़ पानी लेके अपन
0: बिल्कुल, तो उसे काम चलाला फिर साझिए के खाना मिले। लेकिन जब खाए का कह जाओ कि हमने के लगे पर्याप्त खनिज हो गई
1: सही
0: है,
1: बात है भाई।
0: तो भाई ओके हमने के बस कुछ करे के ना जानकारी लेके संतुलित करे के है, और संतुलित कैला से ये जान लेना कि अपने शरीर में ऊर्जा बनल रही।
1: एकदम सही
0: डॉक्टर
1: कहला
0: भैया लोन के लगे चल जाए आ चाहे देखी ल कि 4 बार उल्टी या चाहे दस्त हो गई तो दम शरीर का ऊर्जा कहेला कि अरे
1: लस्त
0: भैया
1: बस्त हो जाना
0: हाँ
1: लोग।
0: एकदम अरे लस्त बस्त हो जाए, मन
1: हाँ
0: अस्त बस्त हो जाए कि लगे कि अरे
1: हाँ
0: हमके तो कुछ अच्छे ना लगा था। और इतने नहीं जितना घर में गदेला लोग हुआ आ चाहे जितनी देखा हर चीज के ना देखे के होई सुने के होई समझे के होई, बहुत से लड़का ऐसा बना जिनकर ऊंचाई ना बढ़े ला है, बहुत
1: हाँ
0: से लड़का बार उनको ऊंचाई ज्यादा बढ़त है, तो ओहू
1: हाँ
0: के देखो ना ओहू के अपने ना कंट्रोल में रखे के चाहिए। कंट्रोल से हमारे तात्पर्य यही है कि भाई ऐसा खाना ऐसा खुराक द कि अगर लंबाई ना बढ़त है तो लंबाई बढ़े।

0: मोटा अगर ना हो तुम तो थोड़ा मोटा हो,
1: स्वस्थ
0: अगर
1: रहो।
0: हाँ उनके कमजोरी निहर लगत हो तो उनके और खुराक का जरूरत है तो ओके संतुलित करे के चाहिए।
1: एकदम
0: और
1: सही कहला सत्तू भैया। संतुलित आहार बदे इहो कहल गया कि बाल गोपाल लोग के मनावा कि घरे देखा दूध है, घरे के बनावल खाना है, रोटी तरकारी है।
0: और एहू बदे मनावा कि भैया ई जान ल कि संतुलित आहार खइबो तो रोग ना होई, और रोग ना होई तो
1: हाँ
0: फिर तो सुई ना लागी।
1: सुई ना
0: तो ई जान ल
1: लगी।
0: कि एहू से भाई अपने रोग व्याध से भी बचे के है। और इतने नहीं सुमारू भैया, ई
1: भैया
0: जान ल कि इससे हड्डी मजबूत होला।
1: हाँ
0: डॉक्टर साहब लोग कहेला लोग कि मांसपेशी या हड्डी इतना मजबूत रही ना कि अगर भाई तनी 2 फीट ऊपरों से गिर गई ल तो खाली वो तो हर पौष्टिकता तो अगर शरीर के बचाई तो हड्डी के बचाई।
1: हड्डी टूटी ना जल्दी। आ इतना ना ही प्रोटीन के खैले से जान दुआ शरीर में जो कोशिकाएं होला ओकर टूट फूट के मरम्मत वही से होला।
0: बिल्कुल।
1: और शरीर के वृद्धि में प्रोटीन के बहुत बड़ा महत्व
0: अरे
1: योगदान है।
0: डॉक्टर साहब लोग कहे ना लोग कि भैया जो ना ब्लड कहा जाला है,
1: हाँ
0: बीपी वाला
1: हाँ
0: मरीज लोग हो जाता ना कि उनको बीपी बढ़ जाती है, बीपी घट जाती है, खुराक से ओके बहुत हद तक कंट्रोल कर जा सकेला, संतुलित
1: बिल्कुल।
0: कर जा सकेला। और इतने नहीं मोटापा हो, देखो ना हम कहते हैं कि अगर तोहर
1: आज
0: बहुत
1: मोटापा की समस्या बहुत
0: हाँ
1: अधिक है
0: एकदम, और जब मोटापा आयल तो ये जान लो कि 10 गो रोग भी ओकरी संगे आयल,
1: एकदम
0: तो
1: एकदम
0: एकदम
1: एकदम
0: वो मोटापे के रोग दी तो भैया रोग से भी निजात मिली। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मानसिक एकाग्रता बढ़ नहीं। अगर तुम्हारे अंदर पेट में संतुलित भोजन है, संतुलित आहार लेत हुआ तो देखो हर काम में मन लगी।
1: बिल्कुल
0: हर
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताओ तुम भैया।
0: और सुमारू भैया सबसे बातचीत करे के इच्छा करी, और
1: हाँ
0: हर जोन काम करे जीवन हाँ कहल जाला ना कि एकदम धड़ल्ले से वो काम हुई।
1: एकदम
0: तो
1: एकदम एकदम
0: देखा संतुलित आहार हम तक कहब कि अपने जीवन शैली में अपने खान पान में अपनावे के चाहिए।
1: और अपने के साथ साथ अपने गोरु चौवन के भी ध्यान
0: बिल्कुल
1: दे।
0: यही ना, जैसे हमने कहें जब भाई वही ना वो
1: हाँ
0: जीव होंगे
1: सही
0: और
1: बात है।
0: उनके भी संतुलित आहार द। और सब प्राणी ऐसा जो चाहे वो कोई भी हो, अरे देख लो कि घरे में कौन पालतू जानवर हो, कुछ ज्यादा आहार इधर उधर कर दिला तो पेट फूल जाए, ओहू के
1: हाँ
0: दिक्कत हो जाए तो ओहू के डॉक्टर के बुलावे के पड़ेला ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भाई देखा ओकर देखभाल करे के हुई। आ सोमारू भैया
1: भैया।
0: देखा आगे भी बत कही कर ली, लेकिन है कुछ संदेश हो सुनवा दे जा फिर बत कही हो।
1: हाँ सुनवा दे।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: संदेश तो सुमा दला सत्तू भैया।
2: हाँ भैया,
1: लेकिन देखा आज अपने पंचायती में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह भैया आयल हुआ और हमन क्या आंवला के अमृत फल भी कहा जाला।
2: हाँ।
1: यही विषय पर देखा आंवले के बागवान में बातचीत हुई, लेकिन देखा हम हर जाती तू नेरे आके जरा बतिया ला अनिल को, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह भैया।
2: हाँ भैया, तनी हम बतिया लेते हैं, तनी सर सुना।
1: हाँ सुनवा दा।
3: आज हम उनके बीच में आयल हैं प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, जे की विभागा अध्यक्ष हैं उद्यान विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज इनसे हमने लोग जानल जाए कि आंवले का बागवानी कैसे कल जा। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब, हमने कार्यक्रम कृषि जगत में आपके स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
3: प्रोफेसर साहब, जैसन कि आज का हमने का विषय भाई अपनी बागवानी से है, तो अगर लोग आंवले का बागवानी लगावल चाहत हुआ तो सबसे पहले उन लोग कौन तैयारी करा और कौन विधि से एकर पौधा रोपण?
4: देखे भैया, आंवले की खेती तो बनारस के अगल बगल आपके प्रतापगढ़ तो पुराना प्रसिद्ध है आंवला खेती के बारे में, और इधर फैजाबाद से बहुत वेरायटी जोने का अयोध्या कहत है। अयोध्या के बाद से एक नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बा, जहाँ से प्रजाति भी निकल गये।
3: अच्छा।
4: ती अपने क्षेत्र का फसल हुआ और बढ़िया से एक खेती कर सकत है, और यह जलवायु में और यहाँ के मिट्टी में बड़े अच्छे ढंग से आंवला की खेती हो सकत है।
3: तो एकर अगर बागवानी लोग करे जात हुआ तो खेत का तैयारी कैसे करें?
4: देखे हम तो खेत का तो गर्मी में किसान भाई का जुताई कर ले, और जो ना जुताई के हैं वो अभव भी जुताई कर सकत है।
3: अच्छा।
4: खूब बढ़िया 3-4 बार बढ़िया खेत के जुताई कर ले, और जुताई में गोबर का सड़ी खाद भैया, देखे हर चीज में अब चलता है कि भाई आपके जैविक

0: खेती करेगी। बात गोबर की सड़ी खाद 10 टन एक हेक्टेयर में कम से कम खूब बढ़िया अंतिम जुताई के समय मिलाई दें, फिर ओकरे बाद खेत के समतल कर लें। समतल किए के बाद फिर पौधा के लगावे की तैयारी करें। हमन गड्ढा खोदे पड़े, देखें आम तो हुए, आंवला हुए, अमरूद हुए, ये सब तो ऐसा फसल एक बेर लग गए तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलत ही। तेकर खेत का खूब बढ़िया तैयारी किए के बाद एकर खुदाई करें। खुदाई में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, इतना संस्तुति कही जात है, ऐसे थोड़ी बहुत कम रहे वह हो सकत है। तेकर पहले खुदाई कर लें। खुदाई किए के बाद मिट्टी निकाल के बहरे रख दें और फिर वह मिट्टी में एक गड्ढा में 20 किलो गोबर की सड़ी खाद, 200 ग्राम नत्रजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास एक पौधा एक गड्ढा में एक डाल के और खूब बढ़िया मिलाई के एक भर दें। भरे के बाद देखें अब जुलाई चलता है, जुलाई से अगस्त तक खूब बढ़िया ढंग से पौधे को रोपणी कर सकते हैं, एमन कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, पौधे से पौधा की दूरी जब गड्ढा खोदे लगी तो आजकल 6 मीटर रखी जाता है, पहले तो 8 मीटर 10 मीटर पे लगाए दें लोग, लेकिन आजकल पौधा की संख्या बढ़ जाए और उसे उपज में भी कोनो खास फर्क न पड़े और चूंकि पौधा की संख्या ज्यादा बढ़ जाए पेड़न का, तो कुल मिला के एक एकड़ में या एक बीघा में पैदावार बढ़ जाए। तो यह किमारी अब 6 मीटर एक दूरी रखें और फिर एक लगावे की तैयारी करें। वही अब जैसे बतावा है कि एक अब लगावे का समय चलता है, जुलाई से अगस्त तक खूब बढ़िया लगा सकते हैं।
1: प्रजाति के बारे में
0: अब देखें, जैसे अयोध्या से निकली बा वैरायटी नरेंद्र 7, नरेंद्र 7 जो ने कहा, नरेंद्र 6 बा है, और एक पुरानी वैरायटी जैसे चकैया बा है और कंचन बा है, ये सभी वैरायटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र जो 7 हुए एक बहुतायत प्रयोग होता है और खूब उपलब्धता भी वहा है, एक वैरायटी बड़ी अच्छी वहा है, ऐसे परागण, हाँ परागण में भी सुविधा रहा था और फूल ज्यादा आ जाते हैं तो परागण हो जाता है तो हम फिर निषेचन का काम हो जाता है तो फल ज्यादा बन जाते हैं।
1: प्रोफेसर साहब, जैसे कि आप बताओ थे कि एक उपयुक्त समय चलत है, बढ़िया समय चलत है ये पौधा, एक पौधा रोपण का, तो लोग भूमि का जैसे चुनाव के बाद भैया कि भाई भूमि के जोत के कई बार गड्ढा खून के करें, तो क्या एक पानी से भी कुछ खतरा है? कहां से कि ई मौसम तो भाई ज्यादातर पानी का है और पौधा लगाते ही समय बहुत ज्यादा पानी हो जाए तो क्या उसे नुकसान है कि फायदा है?
0: न पानी तो देखा ही ना हो चाहे कोनो भी फसल में जरूरत से ज्यादा पानी जो नुकसान ही कर रहा था, तो हम पूरा जल निकास का शुरू में व्यवस्था कर दें। ये ऐसा फसल हो जिसके पानी न ज्यादा चाहे,
1: अच्छा,
0: तो जौने क्षेत्र में किसान भाई के पास पानी का कम सुविधा हो वहां भी एक फसल चुनाव कर सकते हैं। जितना पानी दूसरे पौधन के चाहे, जैसे आम के चाहे, अमरूद के चाहे, उतना पानी के नहीं लगत,
1: अच्छा,
0: उतना तक जहाँ पे कम पानी की सुविधा हो वहां भी एक प्रयोग कर सकते हैं। तो बरसात में यह बात जरूर ध्यान रखें कि अगर खेत में पानी लगाता तो निकले की व्यवस्था जरूर हो चाहे, नहीं तो उसे पौधा का नुकसान है, पौधा सूख भी सकते हैं।
1: अच्छा, लगौला के बाद क्या क्या लोग ध्यान रखें?
0: देखें लगाए के बाद हमन फिर ओके शुरू में तो निराई गुड़ाई भी ठीक से करें, घास ना हो पावे, और आंवला ऐसा फसल हुआ जो ज्यादा पत्ती उत्ती नहीं रहती, तो हम जब तक हम 3-4 साल, 5 साल या 7 साल तक खूब बढ़िया दूसर फसल भी करे किनारे किनारे ले सकते हैं, पौधा से पौधा के बीच में 4 मीटर छोड़ दें तो खूब बढ़िया हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं, ओकर खेती कर सकते हैं। तो लेकिन एक आंवला की तैयारी करे बिना एक निराई गुड़ाई बाकायदे करत रहे, घास फूस न हो, और गर्मी के महीना में चूंकि हम कहा कि पानी जहां कम बहा है वहां पर एकर खेती कर सकते हैं, तो गर्मी में सिंचाई के जरूरत पड़त है हमन 15 से 20 दिन पे पहले साल दूसरे साल, हमन उसे भी बचे के उपाय बहा को के पलवार पर बिछाई दें, जो उन्हें के मल्चिंग रिजिम कहते हैं, तो पलवार पर बिछाई सकते हैं। तो पलवार में देखें कि हर जगह पुअरा वोरा जलाई जाता है तो उसे बचे का रास्ता बहेगी, पलवार हमन बिछाई सकते हैं।
1: पलवार से नमी भी बनल रहे,
0: नमी बनल रहे और 2 साल बाद सड़ जाए तो उसे खाद भी बन जाए।
1: प्रोफेसर साहब, जैसे कि आप कहते हैं कि शुरू के 3-4 साल उमे बीच बीच में खेती भी कर जा सकेला और पौधा भी छोटा रहते हैं, तो क्या उमे विशेष छोटा पौधा है तो उसमें ध्यान रखे की जरूरत है और उस समय का कुछ उनमें खाद या उर्वरक

0: प्रबंधन करे के है, एक बात
1: हमन देखें पहले साल दूसरे साल तक ज्यादा ध्यान देख पड़ा था। तो हमन एक बार जुलाई अगस्त में और एक बार जनवरी के बाद मतलब फरवरी में मार्च में खाद और उर्वरक का प्रयोग करें। तो हमन प्रति पौधा 5 किलो गोबर सड़ी खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 50 से 75 ग्राम हमन पोटास एक डाल दें और डाल के खूब बढ़िया कर गुड़ाई कर दें और फिर उसके बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। जब पौधा का बढ़वार शुरू होए तो हमर फिर कल्ला भी आवे लगत है।
0: अच्छा,
1: तो कल्ला में क्या ध्यान रखा है कि एक अच्छा पौधा बनावे बिना 75 से 90 सेंटीमीटर तक कौनो अगर शाखा होता है 75 सेंटीमीटर तो उसे काट दें और आगे चल करके ओकरे ऊपर 3 से 4 शाखा छोड़े और अगर उससे ज्यादा होता 5 होता 6 होता तो उसे कटाई के दें। ओके प्रूनिंग कहते हैं। तो शुरू में एक ट्रेनिंग कही जाता है, सधाई होके कहते हैं हिंदी में। तो सधाई पौधा के एक आकार दे चाहे कि हर दिशा में कम से कम एक शाखा रहे तो बहुत बढ़िया रहे।
0: अच्छा
1: हाँ, तो एक शुरू में 2-3 साल तक कोशिश करें कि हम जो ज्यादा जोर से ज्यादा शाखा हो तो उन्हें छाड़ दें और अगर कम शाखा वहा है तो ये कोशिश करें कौन दिशा में नहीं जौने दिशा में ना दिशा में होके विकसित हो दें और हम शाखा हर दिशा में करीब करीब हो जाए तो 4 से 5-6 शाखा रहे पौधा अच्छा रहता है। लेकिन नीचे से न रह जाए फिर बाद में कहा निराई गुड़ाई करे में ट्रैक्टर चलाए में दिक्कत हो लगता
0: तो
1: है।
0: मैंने कितना ऊपर तक पौधा चल जाए तो उसे ऊपर ही रखा उसे नीचे का छाड़ दें।
1: कम से कम 75 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक का नीचे का शाखा छाड़ दी चाहिए।
0: अच्छा, जो आप छटाई का बात कर रहे थे तो लोग कैसे करो, बहुत लोग कैंची से या कह जो काटे वाला जो औजार रहे हैं उसे काट देता हूँ।
1: देखो शुरू में तो देखें कि सिकेटियर आवत है, सिकेटियर से बढ़िया छटाई हो जाए ओकर।
0: अच्छा,
1: इतना मोटा नहीं रहत, सिकेटियर से बढ़िया से काट दें और काटे के बाद वह पर जहाँ कटा था वहां पे कापर ऑक्सीक्लोराइड एक दवाई आवत है ओका घोल बना के वहां पर लगा दें।
0: अच्छा
1: हाँ, तो उसे कोनो रोग वोग न बढ़े। हाँ, तो का जरूर ध्यान रखा है कि ओकर कटाई छटाई जब भी करें तो हम थोड़ा सा कापर ऑक्सीक्लोराइड चाहे इंडोफिलियम 45 आवा था तेकर घोल बनाए के ऊपर कपड़ा से अपन लगा दें।
0: प्रोफेसर साहब, जैसे जैसे मान ली पौधा बढ़ जाता है तो का उनमें कुछ रोग व्याध भी आवेला? अगर रोग व्याध आवेला तो उकरी बारे में लोग कैसे जाने कि भाई हाई रोग है और एकर दवा का उपाय कैसे लोग करें?
1: देखें हमन जब ध्यान दही तो हमन कभो कभो दिखाई दिए एक ओकरे काठे में मतलब लकड़ी में छेद करे वाला।
0: अच्छा,
1: हाँ, और उसे हमन गाल बन जाता है जोने की गाल कैटरपिलर कहते हैं। ओके कंट्रोल करे बिना के रोकथाम बिना मेटासिस्टाक एक दवाई आवत है।
0: अच्छा,
1: ओकर जब भी प्रकोप हो ओकर रोकथाम करे बिना मेटासिस्टाक 2 मिलीलीटर 1 लीटर में घोल बना के छिड़काव करे तो उसे काफी हद तक रोकथाम हो जाए। और अगर कतौ कतौ देखा था कि हमन गांठ बन गई है।
0: अच्छा,
1: तो गांठ के नीचे से कटाई कर दें। काहे के गांठ के बाद गांठ बने के बाद ऊपर विकास कम होता फिर वहां से दूसर कल्ला निकल जाए और ओकर फिर 6-7 महीने 8 महीने वो कल्ला भी मजबूत हो जाए। तो जहां भी गांठ बनता है तो ओकर भी ध्यान रखें कि ओकर छटाई कर दें नीचे से तो वहां से फिर दूसर कल्ला निकल जाए फिर पौधा का अच्छा विकास हो। काहे जो गांठ बनी हुआ है ऊपर फिर जो शाखा बने ऊपर बहुत बढ़िया विकास न हो।
0: प्रोफेसर साहब, पौधा रोपण के बाद इमें कितना दिन के बाद फल लगे लगा?
1: देखें फल तो हमन 2 साल बाद बढ़िया सावे लगा था लेकिन अच्छा उपज ये 5 साल में मिले लगा था।
0: अच्छा,
1: 5 साल में मिले लगा था और फिर 8-10 साल का पौधा हो तो कम से कम 1 क्विंटल हमन से फल मिला था।
0: एक पौधा से
1: एक क्विंटल से भी ज्यादा एमन बढ़िया फल मिले।
0: अच्छा, फल की समय कुछ विशेष किसान भैया लोग ध्यान रखें पौधा में?
1: एमन देखें एकर तो भैया ऐसा फसल हुआ है कि जोने में दूसरे फसलों से कम देख रेख करे बाय कम एक पानी भी चाहे। अच्छी बात ये बा है एमन कि हमन पानी भी कम चाहे खाद भी कम चाहे देख रेख भी कम चाहे और आंवला ऐसा फसल हुआ कि जोने का बहुत तरह से उपयोग बा है आजकल बहुत तरह से उपयोग बा है। और ऐसे जैसे आप पुराने समय सोचे थे चनप्रास बनता है अब तो मुरब्बा बनता है एक मिठाई बनता है तो ये ऐसा फसल हुआ जोने में मुनाफा ही मुनाफा बा है और लागत कम बा है। एक बार लगा दें तक हमें वह गर्मी में 1-2 बार सिंचाई करे के बाद खाद डाले के बाद बीज कोनो रोक और ध्यान दे के ज्यादा जरूरत नहीं है।
0: और तोड़त समय भी कोनो चीज को विशेष ध्यान
1: ना तोड़त समय तो ओके तोड़ के ओके

0: छोटे टोकरी में रखा है और कायदे से के बोरा में, वह 30 से 40 किलो बोरा रहे, ज्यादा भारी बोरा न रहे, जोने सोमन खरोच न आवे, दाग न पड़े, कि में एकर बाजार में अच्छा कीमत मिले थे।
1: तो मतलब कि ए विधि से अगर लोग आंवला को बागवानी कही चाहत हुआ तो वो कर सके ना। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, आप हमने उनके कार्यक्रम कृषि जगत में एनी एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सत्तू भैया,
1: हाँ भैया।
2: इतना बढ़िया डॉक्टर अनिल कुमार सिंह भैया से बातचीत कैला कि आंवले के बागवानी कैसे करे, काका इतना ज्ञानवर्धक रहल भैया कि जे जे सुन लो हो बड़ी लाभान्वित हुई और उकर को जो
1: ओकर हाँ
2: लाभ
1: बाग
2: उठे यहाँ
1: बिल्कुल
2: है।
1: बिल्कुल
2: और ऐसे ही अब लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह भैया के धन्यवाद देते तो उनको धन्यवाद देते, लेकिन सुख सुखनाई
1: आप
2: हो
1: होगे भी धन्यवाद भैया, शुक्रिया।
2: गुलाब तो विश्वकर्मा के साथी के गौनाई के साथ धन्यवाद देते।
1: बिल्कुल बिल्कुल आवाज सुनवावल जाए।

0: भैया
1: सत्तू भैया गुलाब चंद विश्वकर्मा के साथी के देखा देशभक्ति गीत तो बड़ी बढ़िया सुना देला कि एक कही भारत मैरिया के दुई गो ललनवा
0: बिल्कुल भैया। और ये जान ल कि अपनी माँ भारत माता के ना देखो माँ का दर्जा दिया गया है, और हमने के उनका पूरा संतान अपनी माँ का हर तरह से सेवा करनी जा भैया।
1: ये चाहबे करे भाई देशभक्ति देखा हमारे के अंदर होवे चाहिए
0: बिल्कुल
1: तब
0: बिल्कुल
1: हमें माता का रक्षा हुई।
0: बिल्कुल
1: दूसरी बात बता दी कल बिहने के बाद
0: हाँ बता दो।
1: कल 6:05 पर दिनेश कुमार सिंह भैया जानकारी दी हाँ करेला का खेती चला रेडियो सब लोग खोल लिए भैया
0: कार्यक्रम रही खेती की बातें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में। और कल संध्या के पंचायती में बातचीत बहुत बढ़िया रही 6:30 पर मूंगफली के उन्नत उत्पादन का तकनीक कहा
0: अरे वाह
1: डॉक्टर प्रतीक सनोडिया से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया का बातचीत रही और साथ में लोकगीत भी हुई
0: बिल्कुल गवनई भी हुई। आ सुमारू भैया
1: भैया
0: देखा एगो चीज हम आपसे कहम ना कि रोज चलत रास्ता ना देखा केहू इधर से ठुकत जात है कोई के, या कोई जल्दीबाजी में इधर से थोड़ा सा उनका ठुक जात है हाथ में, या चोट भी लग जात है थोड़ी थोड़ी की बचाव में हाँ समय का बचाव। अगर वो सोचते हो कि हम थोड़ा तेज जल ले किनारे से
1: नहीं
0: निकल
1: नहीं तो
0: जाए तो
1: ये
0: थोड़ा सा
1: गलत
0: समय
1: है
0: हमारे बच जाए, लेकिन देखा दूसरा के भी नुकसान इस चीज़ से होला।
1: सही कहला भैया। हम कहते कि जोन इतना तेजी को ने बात कहा जब तू चाहे फटफटैया से चला चाहे कोनो गाड़ी से चला थोड़ा सा देखा तो कि पटरी पर अगर
0: चिन्ह
1: जनता
0: हाँ
1: जात है तो थोड़ा धीरे हो जा
0: बिल्कुल
1: और खासकर वहाँ पर जहाँ पर स्कूल रहे अस्पताल रहे बालक लोग निकलत हुआ वहाँ एकदम संयम बरते की जरूरत है।
0: भाई देखो ये नियम कानून भी कहेला, और आपन कहल जाला ना कि एगो आपन मनुष्यता भी एक बात कहेले
1: हाँ हाँ
0: कि
1: हाँ
0: भाई सड़क पर चलत हुआ देखो अगर कोई के चोट लग जात है तो ये तू सोचा ना कि ओकरे संगे संगे तो तोहरों के चोट लग जाई। और दूसरी चीज कि एगो चोट के ठीक होके में ना एगो तो जेकर जेके चोट लगल ओकरी शरीर के नुकसान ओकरी शरीर के दर्द हाँ और संगे संगे घर का भी लोग परेशान
1: पूरा
0: फिर
1: पूरा
0: आर्थिक
1: भैया
0: रूप से भी परेशानी। तो भाई थोड़ी सी सतर्कता में हर चीज को बचाव हो सकेला।
1: एकदम सही कहला सत्तू भैया। अब जब कौन सबसे बड़ी बात यह कि पहली बात है जो यातायात के नियमों का पालन करा बहुत अधिक तेज रफ्तार में मत चलावा है। दूसर बात कि निर्धारित मात्रा से अधिक सवारी मत बैठावा जैसे फटफटैया तो खाली एक लोग बैठे हैं। अब देखा हम तो यह कह भैया कि जैसे कि हेलमेट तो बहुत जरूरी है लेकिन दोनों लोग लगाओ तो और बढ़िया
0: बिल्कुल
1: हो।
0: भाई सबके बचे के है, सबके दुर्घटना से बचे के है, सबके अपनी शरीर का बचाव करे के है। तो देखा जितना से हो सके यातायात में सुरक्षित रहें, सुरक्षित नियम से चलें, और अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ रख ले रहें कि हमके बच के चले के है, दूसरा के बचा के चले के है।
1: सही बात है
0: और सुमारू भैया
1: भैया
0: देखो बातचीत करत करत ना
1: अब
0: अब
1: चले
0: हमने
1: के
0: का
1: बेला
0: चले का
1: होता
0: बेला भी हो
1: तो
0: गई
1: पंच
0: ला
1: लोग से आगे मगा जाए
0: बिल्कुल आगे ले जा। तो
1: तो
0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है परीक्षा मालू की वार्ता। विषय है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट।
1: Hi, good evening to all the listeners. It is a privilege to connect with you today through this special radio program, Youth Empowerment through Skill Development. India is home to one of the world's largest youth populations. More than 65% of our population is below

26 से लापता हैं। अजय यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 51 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, सामान्य शरीर है, रंग सांवला है, चेहरा सामान्य है। ये पीले रंग का शर्ट और स्लेटी रंग का पैंट पहने हुए हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि आपको अजय यादव के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है और ये सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार नेहा पुत्री दिलीप कुमार ये चिलबिल खेड़ा पोस्ट पाटन थाना बिहार जिला उन्नाव की निवासिनी है। नेहा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 19 वर्ष, रंग साफ है, चेहरा लंबा है, लंबाई लगभग 157.48 सेंटीमीटर है, आँख सामान्य है, एकहरा बदन है। ये 1 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। यदि आपको नेहा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को सूचित करें। अगली सूचना थाना भेलपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त हुई है। वेदिका बिंद पुत्री राजकुमार बिंद। वेदिका रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर वाराणसी की निवासिनी है। ये 17 जून सन 2026 से लापता हैं। वेदिका के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु लगभग 18 वर्ष, लंबाई 154 सेंटीमीटर है, रंग गेहुआ है। ये सफ़ेद लेगी पिंक कुर्ती और सफ़ेद दुपट्टा पहनी हुई हैं। ये हिंदी भाषा अच्छे तरीके से बोल लेती हैं। यदि आपको वेदिका के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यम

0: कार्यक्रमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,998 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
1: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम बोर्ड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर है उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
1: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समझौते पर और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब 0 हो गया है। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर, फुटवेयर समेत दूसरे उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
3: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, आज से ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित

0: संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक आज संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। वहीं प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। समिति को प्राप्त सुझावों और अभिमतों पर आगामी चरणों में विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी 10 राज्यों में जा चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले हैं और जो राष्ट्रहित में होगा वो संसद के सामने सिफारिश रखी जाएगी।
1: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग

0: के साथ भी संवाद किया। समिति को प्राप्त सुझावों और अभिमतों पर आगामी चरणों में विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी 10 राज्यों में जा चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले हैं और जो राष्ट्रहित में होगा वो संसद के सामने सिफारिश रखी जाएगी।
1: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमेटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्किल को स्किलिंग के साथ जोड़कर प्रदेश सरकार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।
2: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश के संबद्ध कॉलेजों के MBBS, MD, MS, नर्सिंग और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 55 मेधावी छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए बल्कि कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
3: हमें ऐसे वडिलों से, नागरिकों से, देश प्रेमियों से, शहीदों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा स्किल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास
0: कहने के लिए

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म खामोशी का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बंदिश से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म गुमराह से। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत है रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से, आवाज हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं उषा टंडन और राहत अली। आइए सुनते हैं इनकी गाई गजलें।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार आज के हैं उषा टंडन और राहत अली। अभी आप सुन रहे थे उषा टंडन की गाय गजल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, कलाकार राहत अली।

0: उषा टंडन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हमें खेद है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से हम राहत अली की गाई गजल आपको नहीं सुनवा सके। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर आधारित विशेष कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी है अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
2: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवन स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच

0: सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदीघोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पौहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हो। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रुभाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा

0: और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
1: हरि ओम तत् सत् श्री श्री जगन्नाथ।
2: हरि ओम तत् सत् श्री श्री जगन्नाथ।
3: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
4: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वर्ण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
3: पूरी की रथ यात्रा प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
5: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गोटी पांडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहनने में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्य चित्त लीला करते हैं। दूसरी भगवान

0: जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
1: रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथ यात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
2: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़

0: मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
1: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
2: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल, द नीति एज वी कॉल, एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, cleanliness and sanitation, drinking water, healthcare services, disaster preparedness and effective dissemination of public information, and all the concerned departments of the state government and also many of the government of India, they are working in close coordination to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Ratha Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
1: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
3: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
5: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल, और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
6: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

रसमाधुरी कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म राही बदल गया का गीत। आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म तुलसी से, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन

0: 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर वन है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
0: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को $14 करोड़ मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,

0: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
3: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की

0: प्रवक्ता फातिमे मुहोजा रियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions.

0: the two countries following attacks on vessels in the Strait of Hormuz. The U.S. Military Central Command said the latest strikes were aimed at reducing Iran's ability to target commercial shipping in the Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies. Iranian officials said U.S. strikes hit an army barracks, killing at least 7 troops. Iranian state media reported that U.S. strikes also hit the southern port city of Bushehr, home to the country's civilian nuclear power facilities. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it carried out retaliatory strikes against U.S. military facilities in Bahrain and Jordan, targeting command centers, aircraft shelters, and other strategic locations. It also threatened to halt all energy exports from West Asia over the blockade. Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. We have a report.
1: The Sensex rose 130 points, almost 0.2%, to close at 77,185. The Nifty added 26 points, or 0.1%, to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3%, and small-cap 100 index jumped almost 0.7%. In the Forex market today, the rupee depreciated by 6 paise to close at 96 rupees and 26 paise against the US dollar. With Ayush report, Gaurav Dhawan Lal for Akashvani News.
0: Three Indian women boxers won gold medals while 10 others claimed silver medals at the Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta today. In the Under 19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in 51 kilogram weight class, while Prachi claimed gold in the 57 kilogram category. In the Under 23 division, Nisha won the gold medal in the 54 kilogram weight class. Neeti Chand, Kajal, Muskan and Priyanka won silver medals. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Earlier, Spain stormed into the final of the tournament. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England tonight for a place in the final. That is all in the news at 9 for that.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। مرکزی کابینہ نے آج اتر پردیش میں قومی

0: धारा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया के किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए होगी। इसे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनत के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमिकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इख्तिताम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा।
1: Semicon 2.2. Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि इस सेमिकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए ये स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, ताकि खुद किफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
2: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी।

0: इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को सिफर महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधा कृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहदा भारत और बरतानिया के देरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमेरिका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मोहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाही पासदारान इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया, ताकि स्टार्टअप्स, महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरिए तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो

0: समझौते हुए हैं, देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग व्यापार जगत उनको एक नई ताकत मिलेगी।
1: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाई की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाई की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एक

तैयार मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाई की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाई की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमरीका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के 9 उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मनसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम में पेश है कव्वाली कलाकार हैं एस जफर हुसैन खान और इनकी पार्टी।

0: इस सूफी कव्वाली के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है कानून और हम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है घरेलू हिंसा विषय पर निधि श्रीवास्तव और अर्चना जायसवाल की परिचर्चा। संचालक हैं सुरेखा सिंह।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज घरेलू हिंसा पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अधिवक्ता श्रीमती अर्चना जायसवाल जी और अधिवक्ता श्रीमती निधि श्रीवास्तव जी। हम इसी विषय पर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कानून में घरेलू हिंसा के क्या प्रावधान हैं और अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर केस दर्ज कराना चाहिए, तो विशेष उन्हीं से जानेंगे। अर्चना जी, निधि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अर्चना जी, हम पहला सवाल आपसे करेंगे कि जैसा हम सभी जानते हैं कि महिलाएं भी अब बाहर काम करने लगी हैं, घर का कार्य तो पहले से भी करती आई हैं लेकिन बाहर भी अब महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, तो अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि वो हिंसा हो रही है, मतलब घरेलू हिंसा में क्या क्या चीजें आती हैं?
3: तो सुरेखा जी की नमस्कार। श्रोताओं, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है हमसे। और घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी, और रेप, और शारीरिक मानसिक से तात्पर्य है हमारा कि जैसे मारना, पीटना, पैर से मारना, प्रताड़ित करना। और मानसिक तौर से हम ये कहेंगे कि जैसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर के बाहर नहीं जाना है। जैसा कि हमारे यहाँ सदियों से पहले से ही महिलाओं को

0: बाहर जाने की
1: हाँ,
0: छूट
1: बाहर
0: नहीं
1: जाने
0: रही
1: की
0: है।
1: छूट नहीं रही है। पहले महिलाएं चूल्हे चौके में ही तक सीमित रखा जाता था, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं बढ़ चढ़ के सारे कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, बाहर वो काम भी कर रही हैं। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल में भी समय समय पे महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है।
0: अच्छा, मैं पहले सबसे पहले आप सबको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा है क्या, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं बाहर काम करने जा रही हैं वो ही इस चीज से प्रताड़ित होती है। शायद सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार हमारे यहाँ वो महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन नहीं है, ठीक है।
1: बिल्कुल
0: वो घर
1: बिल्कुल
0: पे
1: सही।
0: काम करती हैं और उनके यहाँ जो उनके ससुराल वाले हैं या उनके जो पेरेंट्स ही हैं वो उनपे कहीं ना कहीं एक दबाव बनाते हैं कि ऐसा है कि तुम्हें शिक्षा की बहुत जरूरत नहीं है, तुम घर पे काम करो, ये करो या ऐसे रहो, ये सारी चीजें।
1: मतलब
0: तो
1: अभी तक तो हम यही जानते थे कि ससुराल के लोग जो जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं वही एक हिंसा में आता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं नहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो 2005 का अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसमें ये इस एक्ट की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो विवाहित हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि घरेलू हिंसा केवल विवाहित विवाह से संबंधित जो
1: बिल्कुल
0: संबंध
1: बिल्कुल।
0: जनित है उन पे ही ये लागू होता है, बल्कि ऐसी महिलाएं जो कि रक्त संबंधित हैं, यानी
1: अच्छा,
0: अगर मान लीजिए कि भाई है
1: किसी भी
0: वो
1: तरीके
0: बहन
1: का।
0: को
1: हाँ
0: प्रताड़ित
1: इसे
0: करता है तो वो भी
1: हाँ
0: घरेलू हिंसा में आएगा,
1: अच्छा,
0: या
1: बिल्कुल।
0: दत्तक ग्रहण से संबंधित अगर कोई संबंध है, ठीक है, हमने किसी बच्ची को गोद लिया और मान लीजिए कि हमें फिर दूसरा बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, फिर हम उस बच्ची को उस तरह से केयर नहीं करते
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये भी घरेलू हिंसा में आएगा।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: ये जरूरी नहीं है कि जो वैवाहिक संबंध है वो ही घरेलू हिंसा से उनका कोई कंसर्न ऐसा नहीं है, ठीक है।
1: अच्छा, एक चीज और है, जैसा कि अभी अर्चना जी ने बताया कि हिंसा का मतलब केवल मारपीट ही नहीं होता है,
0: जी
1: मानसिक हिंसा भी होती
0: जी जी जी
1: है
0: मैं
1: ना,
0: आपको
1: और
0: बताना
1: आर्थिक
0: चाहूंगी।
1: भी, शायद कुछ
0: जी
1: आर्थिक
0: जी
1: हिंसा भी होती है, तो वो क्या
0: धारा
1: चीज होती
0: धारा
1: है?
0: 3 जो इस अधिनियम का है वो बहुत वास्ट डेफिनेशन देता है घरेलू हिंसा का। इसमें 4 चीजें सम्मिलित होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा जो समझा जाता है सबसे ज्यादा तो शारीरिक हिंसा समझा जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बट ऐसा नहीं है। इसमें शारीरिक, मानसिक, मौखिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। मतलब अगर आप अपने घर में किसी महिला को लड़का पैदा ना करने के लिए अगर आप ताने मारते हैं तो
1: ऐसा भी
0: ये
1: बहुत होता
0: भी,
1: है।
0: हाँ ये बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा होता है,
1: ऐसा भी
0: आज
1: होता
0: भी
1: है,
0: होता है,
1: आज भी है,
0: तो
1: बिल्कुल सही।
0: ये बहुत, ये भी घरेलू हिंसा माना जाएगा। आप कंप्लेन कर सकते हैं इसके खिलाफ और ये बहुत आम है, मतलब जिसे महिलाएं ध्यान भी नहीं देती हैं कि चलो ठीक है।
1: सही, कई बार ऐसा होता है ना कि हिंसा होती रहती है
0: जी
1: लेकिन पता ही नहीं चलता है कि ये क्या वाकई हिंसा के
0: जी
1: अंतर्गत आता है या
0: जी
1: नहीं।
0: जी जी
1: तो अगर कभी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये भी है कि कभी अगर ऐसा समझ में आए किसी महिला को कि हमारे साथ ऐसी इस प्रकार की हिंसा हुई और उसको थोड़ा समय बीत जाए, मान लीजिए 6 महीने या साल भर या 1.5 साल बाद उसको ऐसा समझ में आए कि मेरे साथ इस प्रकार की हिंसा हुई तो मुझे केस दर्ज करना चाहिए,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ समय के बाद अगर कोई महिला हिंसा की शिकायत करती हो तो उसे
0: नहीं,
1: दर्ज किया जा सके?
0: मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं पहले तो इसके लिए बहुत टाइम लिमिटेशन नहीं है, और दूसरी चीज की घरेलू हिंसा कोई एक एक इंसिडेंट नहीं होता है, ये लगातार चलने वाला अपराध है, ठीक है। अगर हमें किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करना है तो हम लगातार एक दिन ताना नहीं देंगे, उसे ताने देते रहेंगे,
1: बिल्कुल।
0: तो एक चेन बन जाती है। तो जब भी वो आखिरी इंसिडेंट ऐसा होता है जबकि आपको घरेलू हिंसा ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये परेशान कर रहे हैं, मैंने बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अभी भी ये बंद नहीं हो रहा है, तो आप यथाशीघ्र उसकी शिकायत करें।
1: अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी महिला को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि आप दहेज नहीं लेके आए या पढ़ी लिखी नहीं है या सुंदर नहीं है, इस तरह की भी प्रताड़ना होती है,
0: एकदम
1: तो
0: जी
1: अगर इस तरीके से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे कहाँ जाना चाहिए? कहाँ, अधिकतर होता ये है ना कि महिलाओं को ये पता नहीं होता कि हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार की हिंसा हुई तो हमें शिकायत कहाँ दर्ज करनी चाहिए? जैसा कि नीति ने बताया कि हमारे साथ जब हिंसा होती है तो हमें उसे कहाँ जाना चाहिए, तो हमारा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो कि 2000

0: में पारित हुआ और
1: हम्म,
0: 498A में इसको महिलाओं को इसका संरक्षण दिया गया कि वो सबसे पहले तो ये अपने पास के किसी भी प्रोटेक्शन अधिकारी के यहाँ जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, और अगर उनसे उसे रेमेडी नहीं मिलती है तो वो कोर्ट में जाकर के भी इससे अपना अपनी ले सकती हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे साथ तो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन महिलाएं क्या है कि हमारे यहाँ 32% महिलाओं को ये पता तो होता है कि भारत में हमारी 32% महिलाएं ऐसी हैं जैसे हम, आप, हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, लेकिन हम उसको समझ ही जानते तो हैं कि हो
1: बिल्कुल,
0: रहा है
1: लेकिन
0: लेकिन
1: पता ही
0: हम
1: नहीं होता
0: पता
1: है।
0: ही नहीं चल पाता है। और 85% महिलाएं ऐसी हैं जो कि वो उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है लेकिन वो इसको कहीं पे भी इसकी शिकायत करने ही
1: दर्ज
0: नहीं
1: नहीं
0: जाती
1: करवाता।
0: हैं,
1: हाँ, लेकिन
0: ना दर्ज ही करना
1: इसके
0: चाहते।
1: लिए किस प्रकार की जागरूकता महिलाओं में होनी चाहिए? आखिर कुछ तो
0: जी
1: मालूम होना चाहिए ना कि
0: हाँ
1: उन्हें कानून किस किस तरीके से संरक्षण दे सकता है, तभी तो वो महिलाएं अवेयर होंगी, तभी तो वो जागरूक होंगी, कहाँ शिकायत कर सकती हैं। तो उन्हें किस ऐसी बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि उन्हें पता चले कि वाकई मेरे साथ हिंसा हो रही है।
2: देखिए, ये जो अधिनियम है इसमें कई चीजें बताई गई हैं। तो एक इसमें सर्विस
1: ये
2: प्रोवाइडर्स हैं,
1: आप कौन से, मतलब आप किस अधिनियम के अंतर्गत ये आता है?
2: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा है कि इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मतलब उनको निर्मित किया गया, निर्माण किया गया। तो ऐसी कुछ ऐच्छिक सोसाइटीज होती हैं, कुछ ऐसे मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं सरकार के द्वारा। तो अगर वो जैसे कि महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, है ना, तो वो उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं या फिर उनको शेल्टर दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो ये वो कहाँ जाएंगी? इसके लिए इस अधिनियम ने ये प्रावधान किया है।
1: अच्छा,
2: और दूसरी बात, प्रोटेक्शन ऑफिसर का संबंधी प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत है। तो हम जो चौकी होती है, थाने होते हैं, उसमें पुलिस अधिकारी ही आमतौर पे प्रोटेक्शन ऑफिसर के तहत अपॉइंटेड
1: जी
2: होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं, उनसे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी इस अधिनियम के लिए, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैवाहिक वैवाहिक अपराध होते हैं
1: जी
2: उसकी जो शिकायत होती है, ये हमारे जो प्रक्रिया विधि है उसमें ये बार लगाया गया है मैजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पे, कि वो जो है इस तरह के मामलों में जो पीड़ित व्यक्ति है या उनसे परिचित अगर कोई व्यक्ति है, उनकी कंप्लेन पे ही वो शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोई व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित महिला है, व्यथित
1: जी
2: व्यक्ति है, अगर उससे उसको कोई देख भी रहा है, ये समझ रहा है, कोई भी व्यक्ति इसमें शिकायत कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में पति पत्नी है, अक्सर झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा ऐसा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस घर में जो काम करने वाली आ रही है या अगल बगल की कोई है, अगर वो देख रहे कि कंटिन्यूअस ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा उस महिला को मारपीट है या इस तरह का प्रताड़ना दी जा रही है, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं कि भाई यहाँ अमुक घर में ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। कभी कभी महिलाएं इतनी परेशान होती हैं कि वो खुद नहीं कर सकती,
1: तो मतलब
2: तो
1: कोई आसपास का भी कोई ऐसा
2: जी
1: व्यक्ति है,
2: जी
1: देख
2: इस
1: रहा है कि
2: अधिनियम के
1: किसी,
2: अंतर्गत
1: हाँ
2: हाँ कर सकते हैं,
1: अच्छा
2: वो उसकी शिकायत करके उसको रेमिडीज दे सकते हैं, या उसको फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये ड्यूटी बन जाता है जो कि मानना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है उस महिला को कि आप कहाँ से चिकित्सा, अपने लिए चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ आप शेल्टर ले सकते हैं, कहाँ पे आपकी आपको फ्री लीगल एड दिया जा सकता है कि आप अपने लिए फिर आप केस दाखिल करिए, क्योंकि उनके पास पैसा होना भी जरूरी नहीं है, जब घर से ही निकाल दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो उनको पूरी प्रोटेक्शन देने का काम ये सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं।
0: जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वुमेन पावर लाइफ के रूप में इस समय जो है 1090 एक नंबर है
1: सुविधाएं, हाँ
0: जिसपे
1: बहुत
0: सुविधा दी
1: बिल्कुल
0: गई है,
1: बिल्कुल उसमें दी
0: जिसपे
1: गई
0: महिलाएं किसी भी समय,
1: है।
0: चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय इस पे नंबर डायल करके इस सुविधा का लाभ ले
1: हाँ, ये
0: सकती
1: एक
0: हैं।
1: बहुत बड़ी समस्या होती है महिलाओं के साथ कि अगर कभी नाइट ड्यूटी अगर किसी महिला की है, नाइट शिफ्ट में अगर वो काम कर रही है,

0: रात में कहीं आना जाना है तो ये थोड़ा मुश्किल तो होता है, और बहुत सारी घटनाओं की संभावनाएं भी रात में बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय में दिन में तो कहीं आदमी जा सकता है शिकायत करने, लेकिन रात में कई बार ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या शिकायत करें, कहाँ शिकायत करें। तो क्या ये ऐसी सुविधा रात में भी होती है, कहीं ऐसे हम शिकायत कर सकते हैं रात में?
1: पहले तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर
0: हाँ,
1: सकती
0: वो
1: हैं।
0: हेल्पलाइन नंबर जरा सा आप
1: जी,
0: बता दें मेरी श्रोताओं के लिए।
1: ये हेल्पलाइन नंबर है 1090, जिसपे महिलाएं किसी भी समय फोन करके कॉल करके ये सुविधा ले सकती हैं, और कहीं से भी फोन किया जा सकता है।
0: तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए चलती हुई बस में किसी तरह की दुर्घटना की आशंका है, तो एक टाइम लिमिट में भी क्या उसके पास किसी तरह की सुविधा पहुंच सकती है? जी
1: देखिए, घरेलू हिंसा की बात हो रही है तो ये चीजें घरेलू हिंसा के दायरे से बाहर है,
0: अच्छा।
1: ठीक है? क्योंकि बस में कोई दिक्कत हो रही है तो वो आप दूसरी
0: अच्छा,
1: दूसरे
0: वो
1: कानून के,
0: दूसरा,
1: हाँ,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: वो ये विषय नहीं है। घरेलू हिंसा मतलब आप घर के अंदर, आपके अंदर अगर कोई समस्या घर के अंदर होती है, और दूसरी चीज की जो रेस्पॉन्डेंट होता है, हमको आपको ये बताना भी मुझे यहाँ जरूरी लगा कि अगर आप व्यथित व्यक्ति समझ रहे हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित किसको कहा जाएगा और रिस्पॉन्डेंट यानी प्रत्यर्थी किसको कहा जाएगा। पीड़ित के अंतर्गत आमतौर पे मैंने आपको बताया रक्त संबंध, विवाह
0: बिल्कुल
1: संबंध,
0: बिल्कुल।
1: दत्तक संबंध। एक चीज और आता है, आजकल लिव इन रिलेशनशिप की बात चल रही है
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: सही है।
1: ज्यादा। इस वक्त जो भी कानून है, आप या तो जो नया कानून तीनों बने हैं उसमें भी
0: थोड़ा
1: आप,
0: सा आप इस कानून के बारे में भी मुझे विस्तार से बताएंगी क्या? क्या मतलब कानून में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से किसी आम महिला को प्रोटेक्शन मिल सकता
1: जी,
0: है?
1: ये घरेलू हिंसा अधिनियम, इसके अंतर्गत मैम लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत भी अगर कोई महिला है तो आप उसको भी इसके अंतर्गत सारे जो ऑर्डर्स है उसके लिए दिए जा सकते हैं, या वो कंपेंसेशन का हो, आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर
0: अच्छा,
1: हो, या
0: विवाह ना
1: फिर
0: हुआ हो तो
1: तो
0: ये
1: भी।
0: अधिकारी है।
1: हाँ, आमतौर पे जो CRPC 125 है या इन सारी चीजों के तहत जो वो महिला ही क्लेम कर सकती है जो या तो तलाकशुदा है या फिर वो अभी विवाह की स्थिति में है, ठीक है? लेकिन ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम है इसमें अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही है तो उसको भी वो सारी प्रोटेक्शंस दिए जाएंगे, चाहे वो मॉनेटरी ऑर्डर्स हो या फिर कंपेंसेटरी ऑर्डर्स हो या जो भी ऑर्डर्स है, वो उनको भी वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक बाकी महिलाओं को मिलती है।
0: अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाह रही थी कि अगर उसकी किसी भी तरीके की शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं है तो ये भी क्या किसी प्रकार के हिंसा में आता है? अगर पति उसे किसी तरीके से कंपेल करे, जबरदस्ती करे, तो फिर ये किस तरीके के उस
1: ये
0: अपराध में
1: भी
0: आते हैं?
1: घरेलू हिंसा ही है मैम, इसलिए क्योंकि ज्यादातर इसको समझा नहीं जाता, क्योंकि वैवाहिक जो संबंध है वो पति पत्नी की सहयोग पे चलता है। अगर महिला की इच्छा नहीं है तो पति उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। बाकी अधिनियमों में ये जो एक मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमारे भारत में एक इसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो कानून है इसके तहत इसे लैंगिक उत्पीड़न माना
0: अच्छा।
1: जाएगा। मतलब अगर महिला का जो सेक्सुअल अब्यूज है वो इसके अंतर्गत माना जाएगा। अगर महिला की गरिमा का अपमान होता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, तो वो इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा माना जाता है।
0: अच्छा, तो इसमें भी क्या किसी तरीके की सजा का प्राविधान है या क्या
1: जी
0: है?
1: मैम, जी मैम, इसके लिए भी पूरा प्रावधान है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको इन सारी चीजों के लिए नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको ऑर्डर हुआ है, प्रोटेक्शन ऑर्डर हुआ है, और पति इसके बावजूद करते हैं ऐसा, तो 1 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
0: अच्छा, ऐसा है। एक चीज और भी मैं जानना चाह रही थी अर्चना जी आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी शिकायत तो दर्ज करती हैं लेकिन कोर्ट में ही सेटलमेंट हो जाता है, और अगर उसे कोई एक पक्ष मानता नहीं है, पति या पत्नी में से कोई नहीं मानता है, डिनाई करता है, या मान लिया कि 2 या 4 महीने तक वो मानते हैं, उसके बाद फिर नहीं मानते उसे, तो फिर उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है?
1: हमारे IPC की धारा 125 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा उसको तो पहले भरण पोषण के लिए ऑर्डर किया जाता है। अगर फिर भी अगर वो उसका नहीं सुनवाई होती है, अगर वो पति पीड़िता को नहीं देता है, तो 128 के अंतर्गत उसको जो है रिकवरी का उसको होता है।

0: देखा है, आईपीसी की धारा 128 के अंदर रिकवरी के लिए कोर्ट से आर्डर होता है कि अगर फिर उसको पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया जाता है जितना, अगर वो नहीं, जैसे उसने 4 महीने 5 महीने तो दिया, फिर वो शांत हो जाते
1: हाँ,
0: हैं,
1: शांत हो जाते हैं
0: जैसा
1: ज्यादातर,
0: कि
1: यही होता
0: अमूमन
1: है।
0: यही होता है। तो कोर्ट से हमारे यहाँ फिर उसको ऑर्डर दिया जाता है,
1: अच्छा,
0: तो उसको
1: यानी फिर से
0: प्रशासन के
1: वो,
0: द्वारा उसको
1: हाँ,
0: रिकवर कराया
1: यानी
0: जाता
1: फिर से
0: है।
1: वो शरण ले सकती
0: जी
1: है
0: जी
1: कानून।
0: जी
1: इसमें कुछ प्रावधान इस अधिनियम में भी दिए गए हैं। इस कानून के तहत सबसे बड़ा जो ऑर्डर होता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, मतलब अगर महिला है, पीड़ित है, तो उसे प्रोटेक्ट करती है कोर्ट, ठीक है। तो उसके लिए पति को पूरा ऑर्डर दिया जाता है कि आप ऐसा है कि पत्नी के साथ वो कार्य नहीं करेंगे जिससे उसे आपत्ति है, ठीक है। अगर वो किसी स्कूल कॉलेज या कहीं पढ़ाती है, जॉब करती है, आप उसका पीछा नहीं करेंगे, उसके बच्चे जहां पढ़ते हैं आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, और जो भी उसकी शिकायतें हैं वो कार्य आप नहीं करेंगे, अगर फिर भी करते हैं तो धारा 31 के तहत 1 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना है। अच्छा,
0: रिमेंड
1: और महिलाओं के हित के लिए कानून में और क्या-क्या ऐसे प्रावधान हैं
0: जी
1: कि वो कानून की शरण में जा सकती है और अपना केस दर्ज करा सकती है, और उसे क्या-क्या ऐसी जानकारी होनी चाहिए?
0: देखिए मैम, महिलाओं के लिए बहुत से प्रावधान हैं, और मतलब मैं आपको बता दूं इसका कभी कभी बहुत दुरुपयोग भी होता है, ज्यादातर आजकल हो रहा है। प्रावधान तो मैम अगर आप देखते हैं तो जो हमारे नए कानून हैं उसमें भी प्रावधान है, ये एक्ट है। इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो भी कानून है। महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, वो उसके लिए इजीली आराम से शिकायत कर सकती हैं, दर्ज कर सकती हैं। कभी कभी उन्हें ऐसी भावना आती है कि शायद हम इस पचड़े में नहीं पड़ रहे हैं, तो क्योंकि कोर्ट कचहरी से हर कोई बचना चाहता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बचना चाहता है। अगर कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी है, ऐसी बातें हैं, तो उन्हें इन सारी चीजों में शर्म को हटाकर और सबसे पहले तो इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर अपराध होता है तो उसकी कंटिन्यूटी फिर बन जाती है।
1: हाँ बिल्कुल। मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा था कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसे किस तरीके से कहाँ जाना चाहिए, किसके संरक्षण में जाना चाहिए?
0: मैम जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रावधान है, महिला सबसे पहले तो हेल्पलाइन कॉल कर सकती है या जाके डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। उसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो DIR रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। DIR में है कि क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी घटना का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद सेक्शन 12 के तहत ये मैजिस्ट्रेट के पास ये DIR रिपोर्ट्स जाती है, जिसपे मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं। उसके बाद इसमें एक काउंसलिंग की सुविधा है कि पति पत्नी को या फिर जिसके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और जो कर रहा है, परिवार को बैठाया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी कि आप समझ लीजिए, देख लीजिए, कानूनी पचड़े मत पड़िए। फिर भी अगर समझ में आता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इसके लिए फिर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं प्रोटेक्शन। 5 तरह के इसमें ऑर्डर्स हो जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, और जैसे कि सांझी गृहस्थी में रहने का उसको निवास का अधिकार दिया जाता है, धनी अनुतोष मॉनिटरी उसको दिया जाता है, रेमेडी दी जाती है, कंपेंसेशन अगर मान लीजिए कि उसके मानसिक प्रताड़ना दी गई है, कुछ भी परेशान किया गया है, तो उसके लिए उसको कंपेंसेशन दिया जाता है। धनी अनुतोष अगर उसकी चिकित्सा करवाई जानी है, इतना मारपीट हो गया है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, तो उसका अनुतोष दिया जा सकता है। अभिरक्षा अनुतोष दिया जा सकता है, जैसे कि अगर बच्चे हैं तो उनको कस्टडी में लेने की का ऑर्डर मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है मैम कि सेक्शन 16 के तहत इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है,
1: अच्छा
0: यानी अगर पक्ष चाहे, पक्षकार
1: बिल्कुल।
0: चाहे, तो उनकी खुले न्यायालय में उनकी प्रोसीडिंग्स
1: हो
0: नहीं
1: सकती
0: चलती, नहीं चलेगी।
1: नहीं? अच्छा,
0: हाँ, मतलब वो
1: हाँ,
0: अकेले में उनकी
1: अकेले में कर सकती
0: प्रोसीडिंग्स
1: हैं। अच्छा
0: चलेगी,
1: अच्छा
0: जिससे महिला को अजीब नहीं लगे।
1: जैसा कि साझा और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, उसमें यह है कि पीड़ित महिला ऐसे घर में रहने का अधिकार रखती है जिसमें पति भी रहता हो। पति
0: अच्छा
1: यह नहीं कर सकता है कि ये जो घर है मेरे नाम का नहीं है, चाहे वो फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम से वो घर हो, उसमें वो महिला रहने का अधिकार रखती है और वो उसमें रह सकती है। जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है,

0: यस आर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा डिसीजन दिया है कि जिसमें महिलाओं को बहुत इसमें रिलीफ मिलने लगा।
1: अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा था कि ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं ना, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कौन कोर्ट कचहरी जाएगा, पैसे लगेंगे, तो क्या सरकार की तरफ से या कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया है जो थोड़ा आर्थिक रूप से जो सक्षम महिलाएं नहीं हैं वो भी किसी प्रकार का कानूनी संरक्षण ले सकती हैं?
2: देखिए मैम, हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और संविधान हमारा ये बहुत बड़ा अधिकार देता है फ्री लीगल एड का। तो किसी भी महिला के पास अगर पैसे नहीं है तो भी उसे कानूनी अधिकार, कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार है।
1: तो उसके लिए उसे कहां, महिला को कहां जाना चाहिए?
2: यस मैम, उसके लिए मैंने आपको बताया जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कुछ एसोसिएशंस होते हैं, कुछ एनजीओज होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं।
1: अच्छा,
2: ठीक है, तो वो धनी सहायता भी उपलब्ध कराते हैं महिला को, उन्हें संरक्षण भी प्रदान करते हैं, उनकी चिकित्सा सहायता भी कराते हैं। तो महिला उनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है और इसके लिए भी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएं, शिकायत दर्ज कराएं, प्रोटेक्शन ऑफिसर खुद ही सूची रखते हैं।
1: अच्छा, कि इस क्षेत्र में जाना जा रही थी कि ये एक आम महिला को तो पता नहीं होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए,
2: तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास सारी सूची होती है कि इस एरिया में कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको सहायता दे सकते हैं, वो उनके पास उनको भेजते हैं।
1: अच्छा, ये तो बात हो गई घरेलू हिंसा की, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है कि घरेलू हिंसा को रोका जा सके, कुछ ऐसा भी प्रावधान है क्या?
0: जी मैम, ऐसा है कि इसके लिए बहुत सारी जो है सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई कारणों को लेकर के कर सकते हैं। जैसे पारिवारिक समायोजन होना चाहिए और नैतिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाए, नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाए और सादा जीवन उच्च विचार शिक्षा में शामिल किया जाए और सोशल मीडिया की अफवाहों पर रोक लगाई जाए और जैसा कि महिला संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाए।
1: कई बार ऐसा भी होता है अर्चना जी कि महिला का अगर पति नहीं है, यानी अगर विधवा महिला है, तो उसके साथ भी बहुत तरीके की हिंसा होती है, तो उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है?
0: जैसा कि अभी 2019 में एक नया केस आया है अजय कुमार बनाम लता शास्त्री, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि देवर भी जो है कि उस महिला को घरेलू हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम के तहत विधवा के देवर, विधवा के रख रखाव की का सारा भुगतान करेगा, उसका देखभाल करेगा। जैसा कि इस केस में भी 2019 का नया डिसीजन कोर्ट का आया है कि देवर भी अपनी भाभी के रख रखाव और उसके खर्च का वहन करेगा, उसकी सारी देखभाल करेगा।
2: मैम, जैसे ससुराल वाले भी हैं, अगर पति नहीं है तो भी अगर ससुराल में महिला रह रही है और घरेलू अत्याचार की शिकार है तो ससुराल वालों का पूरा दायित्व तो बनेगा कि वो उसको मेंटेन करें और साथ ही
1: इसके लिए, यानी वो महिला शिकायत दर्ज करा सकती
2: है। जी, इसके लिए भी कर सकती है। अगर तलाकशुदा महिला है, ठीक है, फिर भी अगर उसका पति उसको जाके परेशान करता है या कुछ भी ऐसा ससुराल वाले भी कुछ कहते हैं, कुछ भी है, तो वो भी इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके लिए भी एक केस है कृष्ण भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी का, 2015 का केस है, उसके तहत महिला शिकायत दर्ज करा सकती है।
1: चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर महिलाओं को किस तरीके से जागरूक रहना चाहिए।
2: मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी बात शिक्षा, अगर महिला शिक्षित है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी। तो पहले तो महिला को शिक्षित करने का सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है और एक आम नागरिक के तौर पर भी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि अपने आसपास के समाज को कैसे शिक्षित किया जा सके। दूसरी चीज कि ये एक जो चलता है चलन की नहीं, महिला घर पे ही रहनी चाहिए, उसे घर का ही काम ज्यादा शोभा देता है, तो ये समाज, ये जो माइंडसेट है इससे निकलना चाहिए।
0: अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं स्वयं अपने आप में पूर्ण है और वो इस बात महिलाएं अवश्य ध्यान दें कि वो फैमिली के साथ साथ प्रोफेशनल भी हैं और वो एक माँ, पत्नी, बहन है जिसके और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उन्हें इनको भी निभाना है।
3: श्रोताओं, आज की हमारी इस बातचीत से उम्मीद है आपको काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी।

0: अर्चना जी, निधि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: कानून और हम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे घरेलू हिंसा विषय पर निधि श्रीवास्तव और अर्चना जायसवाल की परिचर्चा। संचालन कर रही थी सुरेखा सिंह। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
2: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के

0: 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है निखिल दास का बांसुरी वादन, राग है किरवानी। आपके साथ तबले पर संगति किया है नागेंद्र मिश्रा ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे निखिल दास का बांसुरी वादन। राग था किरवानी। आपके साथ तबले पर संगति की थी नरेंद्र नागेंद्र मिश्रा ने। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: मानव मात्र में भेद क्यों?
3: समानता सह अस्तित्व हर जीव का अधिकार।
2: अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिखाई सत्य शांति प्रेम और अहिंसा की राह।
3: आइए इस राह पर चलने का संकल्प लें।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
5: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
4: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन डीआईबीडी और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
7: Semicon 2.0.
8: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
6: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said, that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, that is BLOs, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till the 3rd of August. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav today launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program, IFETP, in New Delhi. It is an initiative through National Center for Disease Control to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district surveillance officers through 14 premier medical and public health institutions. In a social media post, the Health Ministry informed that the program will enhance capacities in disease surveillance, outbreak investigation, public health data analysis and surveillance system evaluation, further strengthening India's public health emergency preparedness and response. Three Indian women boxers won gold medals while 10 others claimed silver medals at the Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta today. In the Under-19 category, Chandika Pujari won the gold medal in the 51kg weight class while Prachi claimed gold in the 57kg category. Gunjan in 45-48kg, Joyshi in 54kg, Chahat in 60kg, Anshika in 75kg, Megha Shyokand in 80kg and Prachi Tokas in plus 81kg added silver medals to India's tally. In the Under-23 division, Nisha won the gold medal in the 54kg weight class, Neetika Chand in 60kg, Kajal in 65, Muskan in 75 and Priyanka in plus 80kg won silver medals. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 241.5 चैन मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये सभा कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।